सोचेंगे कि तुम्हें प्यार करूं कि नहीं। कुमार सानू ने आपको सुना ये फिल्म दीवाना में से निकाल कर ये गीत हमने पेश की। थोड़ी बहुत मुझे याद ये है ऋषि कपूर और दिव्या भारती की फिल्म। दिव्या भारती एक बहुत जवां उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया, हेल यंग ओवर लीड। मुझे पता नहीं कितना देखना पड़ेगा, लेकिन सेस हेल यंग ओवर लीड दिव्या भारती। चलो हम आपको अब ये गीत सुनाते हैं इस तरह से। जी नहीं, गीत सुनाने से पहले, जी हाँ, गीत सुनाने से पहले फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये गीत सुना ही दूँ। चलिए ये गीत आपको सुना ही दूँ, और वो है इस तरह से।

फिल्म पूर्णिमा में से निकाले हैं, मैं मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी मिलके आपको सुनाए हैं 1966 का ये फिल्म, निकिन सेंसेस्ट का ये फिल्म और हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो है ये भी लता जी, ओनली लता जी, लता जी की आवाज़ में ये धमाकादार गीत हम आपको सुनाते हैं। आपने सुने हमने कहा धमाकादार गीत, जी हाँ वास्तव में बहुत धमाकादार गीत है। ये भी 1966 का है, फिल्म आए दिन बहार के, फिल्म आए दिन बहार के में से लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के सांझ पर। आओ ये लता की आवाज़ में इसे ध्यान से सुनिए, गीत आपने बहुत बार सुने होंगे लेकिन आज स्पेशल सुन लीजिए, क्योंकि ये बात नहीं कि गंगा चला रहा है, जी नहीं, लेकिन ये गीत की धुन जो है और जिस तरह से लता जी ने ये गीत गाए हैं, वाह बहुत कमाल के है।

फिल्म आए दिन बहार के ये गीत हम आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर और लता जी की आवाज़ में टाइटल सॉन्ग आए दिन बहार के निकटिन सेशन सेस्तक का ये फिल्म। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, माइटी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। जी हाँ, लता जी के साथ 1961 का फिल्म छाया में से निकाल कर।

चोरी चोरी, और ये गीत हम आपको सुनाए हैं सलील चौधरी के साज पर, मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये भी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज है। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर फिल्म साजन में से 1969 का ये गीत निकली, निकने से का ये गीत। हमने एक बार कहा था, पता नहीं कब, लेकिन एक बार फिर कह देते हैं, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है, जोड़ी है म्यूजिक डायरेक्टर जो सबसे ज़्यादा फिल्मों में साज दी है, 454 फिल्मों में इन्होंने साज दिए, सबसे ज़्यादा म्यूजिक डायरेक्टर जो फिल्मों में साज दिए। चलिए हम आपको सुनाते हैं फिल्म साजन में से ये गीत। लता जी के साथ

रेशम की डोरी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर 1969 निगेतिन से अस्तक का ये गीत हम आपको सुनाए हैं लता जी और रफ़ी साहब के आवाज़ में। रेशम की डोरी इसका सारे भी बनता है, जी हाँ, रेशमी शायद सारी। चलिए

ऐ प्राणी, संसार में सुख दुख, भाव अभाव, होना न होना, लाभ हानि और जीवन मरण, ये सब सभी प्राणियों को बारी बारी से प्राप्त होते हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हारी सुबह शाम की पूजा तभी स्वीकार करता हूँ जब तुम्हारे दिन के काम काज में एक भी झूठ नहीं होता।

मित्रों, जो लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं, उनसे मेरा जी घबराता, क्योंकि उनके कहने और करने का कुछ ठिकाना नहीं है।

संसार की तरफ चलने वाले का कोई भी साथी नहीं होता, पर भगवान की तरफ चलने वाले के सब साथी हो जाते हैं।

भाइयों और बहनों, जहां साहस और परमात्मा साथ है, वहां कठिनाइयां व समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। यह मेरा और मेरी पत्नी

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्यषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम

सर्वभूतेषु बुद्धि रूपे न संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमम। सुनने वालों, सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए मैं संजय, जो आपके साथ जुड़ गए हैं, कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करूंगा और कुछ सुंदर सुंदर भजनों के साथ।

जो बीमार है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिसके घर पे एक नया शिशु ने जन्म लिया है उन्हें बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत सा हैप्पी बर्थडे। जो अपने तैयारी कर रहे हैं कुछ शिक्षा दीक्षा लेने और देने को, तो उनको भी माता सरस्वती को ओर से शुभकामनाएं प्रस्तुत है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी के ओर, तो उनको ओर से ये कहना चाहूंगा, हर बार की तरह कि गांधी जी को भूलना नहीं। ये मत सोचना कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये सोच जा आपको रहेंगे तो ये, अगर मैं आपसे ज्यादा ना कह दूं तो ये जरूर स्पर्श है कि आप अपना समय पे पेंशन को प्राप्त कर सकेंगे।

सुनो लो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर सा दोहा हम सबके लिए लिख गए हैं। और तुलसीदास कह गए हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान।

इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ यही है कि जब तक मनुष्य के मन में काम, क्रोध, अहंकार और लालच भरे हुए है, तब तक एक ज्ञानी पंडित और एक मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों समान होते हैं।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूँ और एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

स्वस्ति माहौल के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और हमारे सभी कर्मचारियों जो हमारे सभी कोलीग खास होते हैं उनके ओर से एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे। भजन का बोल दो तीन है जिंदगी।

आई जगत में काई करो, यानी कहने के तात्पर्य ये है, हम जगत में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करके जाए जिसे हमें कोई बाद में कुछ बातचीत करके, ऐसा ना हो कि हमारा जो कर्म किए हमने वो कर्म ऐसा है जिसके बारे में लोग नेगेटिव बात करते रहे। दोस्तों सुन लो वालों, बातचीत, बातचीत ये दो शब्द ही है, पर की जाए तो दिलों को कई मैल धुल जाते हैं। एक सुंदर सा भजन और हम चलाने वाले हैं जो हमारे स्टूडियो यानी फाउन रेडियो का सभी कोलेखास की ओर से।

स्वस्ति मिश्रा के आवाज में ये सुंदर सा भजन कि तेरी शुक्रिया है सुबह की पहली प्रणाम कि हे ईश्वर आपकी कृपा से एक नया सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। आपकी आभार हूँ मेरे सभी मित्रों और सभी संबंधियों, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु को प्राप्त करे। अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं सुनने वालों, और ये भजन भी सभी को लेकर खास हमारे डायरेक्टर कुमार घिराव जी के ओर से, जॉनी सुरजबाली जी के ओर से, शांता खेमाई, रजेश बदलू, राजन द्वारका, प्रदीप फेराई, विजंती नाथू, रोसिता गिरजा सिंह, सुरेन भगवान दीन, बबली आसरा, रोमियो हाउस, संजय भगवंत, गंगा चंद्र जी और यूसुफ सीतू, बीबी साहिबा रहीम बख्श जी, श्याम पूरन, अनुराधा चंद्र जी और राजेंद्र सिंह हैन और अनिल सरजुग जी के ओर से ये सुंदर सा भजन।

जब कुछ समझ में ना आए तो सीताराम गाइए, और यही संदेश, जो सुंदर सा संदेश हमारे फाहुन का सभी कोलेगास की ओर से रखा गया, और एक मैसेज जो उत्तम नगर भारत से आया है, ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है, और संदेश ये है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। तो ये सुंदर सा संदेश भाई ईश्वर जी जो उत्तम नगर भारत से और ये संदेश को भेजे है, एक बार और उसे दोहरा दिया जाता है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। एक और सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

होगा वही जो राम ने लिखा है। ये सुंदर सा भजन हम सब सुने अजय तिवारी के आवाज में। सुनवलो, हमारे पास मोहन गार्डन भारत से भी एक और मैसेज आए है कि गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा होगा उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। ये सुंदर सा मैसेज श्रीमती सुनील जी जो मोहन गार्डन से भेजे है। बहुत खुशी की कार्यक्रम को अन्य और स्थानों पे भी सुना जाता है। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और एक और सुंदर सा भजन के ओर बढ़ रहे हैं।

जया किशोरी और सोनू निगम के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने जो हमारे देश में सफर करने को आए हैं। हार्दिक से स्वागत किया जाता है और कहना ये चाहूँगा कि हमारे देश में हॉलैंड में कितने मंदिरों है, जैसे कि देन हाग में राधे कृष्ण मंदिर, देव मंदिर जो हर रविवार को और लगाया जाता है शाम में 2 बजे से 5 बजे तक, मंगलवार को राधे कृष्ण मंदिर जो 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, सेवा धाम मंदिर जो देनहाग शहर में वो भी शाम को लगाया जाता है हर रविवार को, और इसी प्रकार से सुतमेर शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि हर मंगलवार को लगाया जाता है 6 बजे से 8 बजे तक, दमेरन शहर उत्तराखंड में गणेश मंदिर जो भी हर मंगलवार को 4 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, इसी तरह से अलमेर में विष्णु मंदिर जिसे हम गोल्डन टेंपल के नाम से जानते हैं वो भी हर रविवार को 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। ऐसे भी हम लोग के देश में जो सुंदर सुंदर मंदिरों का स्थान है।

जहाँ पर हम सब जा कर के सत्संग आदि कर सकते हैं और कथन वहाँ हर अलक मंदिर दिन पे कथा को और जो व्यास भगवान का प्रार्थना पूजन आराधना किया जाता है, संदेश को रखा जाता है। रोटरडम शहर में शिव मंदिर और शिव मंदिर अरनहेम में भी हर रविवार को जो सुबह में रोटरडम में और सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक, और अरनहेम में जो कि 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। हम एक और भजन की ओर बढ़ेंगे, राधा रानी का चरण, जो कि चित्रलेखा जी के आवाज में रखने वाले हैं।

राधा रानी के चरण प्यारी प्यारी, चित्रलेखा जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। दोस्तों, हम एक और मैसेज जो प्रदीप जी जो उत्तम नगर से हमारे लिए भेजे हैं, और ये मैसेज का बोल ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव और समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। तो भाई प्रदीप जी को बहुत सा और नमन करता हूँ, और ये सुंदर सा संदेश रेडियो पर रख दिया गया। हम एक और सुंदर से भजन की ओर बढ़ेंगे। सुनने वालों, जया किशोरी जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन।

सुनने वालों, मैं संजय आपके साथ जुड़े हुए और ये दावा के साथ कह रहा हूं कि आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं, एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं संजय। क्योंकि पुलिंग स्त्रीलिंग में तो कभी गलती भी हो जाता है, विश यू अ वेरी गुड डे।

अगर आपका दिन एक शुभ दिन हो, यही आशा लेकर हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जुड़ गए हैं।

धुरंधर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुना है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुना है, पता नहीं चलता लोग इज्जत कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया गीत हमारे लिए है।

चुनरी चुनरी, ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यश में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं। तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर दिवस आपको रहे। Een hele vreugdige en gelukkige dag toegewenst.

सर्दियों में तो थोड़ा बटन ज्यादा लेफ्ट की ओर घुमा दिया था या राइट की ओर पता नहीं, पर लाल जल रहा था। आप अपना रेडियो का बटन किस ओर घुमा रहे हैं, बस ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ।

सुंदर सा गीत जो निकाला गया एक फिल्म जो 2025 में रिलीज हुआ। कहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है जब परखने वाले नहीं समझने वाला मिल जाते हैं। एक और नया सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे सुनने वालों, और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। मौसम पता नहीं कैसे है, गर्मी है या सर्दी है, पर जरूर अपना चलने का व्यवस्था आज का भूलना नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रोज हमें कम से कम शेष दौसन स्थापन तो करना ही है, तो उस पे जरूर ध्यान देना। और यहाँ से फाहुन से हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे।

0: वेलकम टू द जंगल, ये फिल्म जो 2026 में है और इसमें से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गाया गया है। और कहते हैं कि कुछ पंजाबी गीतों जो फिल्मों में चलाया जाता है आजकल, देखो भोजपुरी भी खूब जोर तोर से सहयोग दे रहा है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी जो सुरिनामी हमारे सुरिनाम भाषा से ज्यादा मिलते जुलते है।
1: अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।

वापस आऊंगा। कहते हैं दोस्तों सुनने वालों की देखकर दूसरों की आनंदित होना स्वस्थ मन की पहचान है। देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। ये सुंदर सा संदेश रखने वाले ईश्वर सिंह जो भारत से हमारे लिए ये मैसेज को भेजा और आपके तक पहुंचा दिया गया।

एक फिल्म जिसमें आयुष्मान और भूमि जी ने अपना कला सा प्रदर्शन दिए। दोस्तों कहते भी कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। एक और सुंदर सा गीत को मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है।

अ ग्रेट सॉन्ग हल्लालो, जिसमें काम किए रामचरण, बुच्ची बाबू, श्रुति हसन और जानवी कपूर ने। तो ये बात कहा जाता है कि समय और बचपन दोनों ही यादों में सबसे सुंदर लगते हैं। तो क्यों ना हम एक और सुंदर सा सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं।

आर्यन खान और राशमिका मधाना अपना कला से प्रदर्शन दिया। ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया न्यू सॉन्ग 2026 रोमांटिक सॉन्ग जो कि निकाला गया दिल पे तेरा नाम। दोस्तों सुनने वालों, हम इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। और भारत मोहन गार्डन से भाई ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है कि दुनिया में दो ही पौधा दुनिया में दो ही पौधे ऐसा है जो कभी मुरझाते नहीं। पहला जो निस्वार्थ प्रेम से और रहे, और दूसरा जो अटूट विश्वास।

तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर ने ये फिल्म में काम किए। दोस्तों सुनने वालों, मैं आपके साथ कुछ समय तक और व्यतीत करूंगा। एक और सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर ट्यून करके रखे हुए है, क्यों ना उस ओर बढ़ते हैं कि मुझको तुमसे प्यार हुआ।

0: जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। रूबरू मिलने की इच्छा करता है लेकिन शब्दों से ही बयां करता हूँ। आज के मेरे फाउन हिंदुस्तानी के रेडियो के श्रोता गणों को यानी राजेंद्र सिंह का हार्दिक नमस्कार और अभिनंदन। आज का जो प्रोग्राम है उसके विषय में हम बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में और पितृपक्ष के समय के बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब हमारे रिसर्चर हैं, बहुत गहरे गहरे से खोज खोज के लाते हैं और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो शांता जी आप कुछ कहना चाह रही है?
1: हाँ जी राजेंद्र जी, जाना था हमसे दूर, जाना था हमसे दूर, बहाने बना लिए, अब तुमने कितने दूर ठिकाने बना लिए। मेरी आवाज़ के सुनने वालों, सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम। और यहाँ से जैसे राजेंद्र जी कहा कि आज की ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम यहाँ से हम लेकर उपस्थित हो गई है,
0: तो क्यों ना शांता जी जिनका दिल उदास है उसके लिए, उनके लिए कोई एक भजन चलाया जाए।
1: हाँ बिल्कुल, यहाँ से चला दे।
0: उदासी मन काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार।

0: राजेंद्र जी, राम जी का और जो कृपा है तो जरूर हम सब पे है। सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए शांता जी, ये बताइए कि क्या आज का विषय है?
1: जैसे हमने बताई शुरुआत में, तो आज के विषय है पितर पक्ष के बारे में। तो उसी के विषय में हम आप सबको यहाँ तैयारी करी है और यहाँ से हम अपने सुनने वालों को पहुँचाएंगे, बताएंगे कि पितर पक्ष के बारे में और उसके क्या सब सुविधा कर सकते हैं।
0: राजेंद्र जी, अगर जब देखा जाए कि जब ये त्योहारों में एक त्योहार, ये पितृ का त्योहार जब आ जाता है ना
2: जी,
0: लोग पंडितों को फोन करने लगते हैं और पूछने लगते हैं, खास करके जिनका परिवार में हाल ही में कोई गुजरे हुए है, तो वो पूछने लगते हैं कि क्या मैं ये पार्व श्राद्ध जो है, पितृपक्ष जो हम सूरीनामी में कहते हैं ना, तो उसे उसमें हम अपने पितरों के लिए कुछ कर सकते हैं? ये प्रश्न हर बार आता है और हर बार पंडितों जनों से ये बढ़िया से संदेश दिया जाता है, पर उसके अंतर्गत में आज हम लोग के कुछ और जानकारी मिल सके तो बड़ा बढ़िया होता।
2: आज बहुत सारी जानकारी इसी बारे में है, इसीलिए ये प्रोग्राम में आज ये चीज़ रखी है। पितरों के लिए इसी समय जो समय है वही समय कर सकते हैं।
0: पर राजेंद्र जी, बात ये हो जाता है, लोग मांगते हैं करने को
2: जी,
0: यहाँ पर ये भी संदेश हो जाता है कि कभी काल के कोई ऐसे बात करते हैं कि मैं अपने पितरों के अंतर्गत कुछ करना चाहते हूँ। पितरों है जो इस समय जो दुनिया को छोड़ चले गए, जिनके कृपा से हम लोगन है, यानी कि हमारे पितरों का नाम, तो ऐसा जब देखा जाए तो आजकल लोग से पूछा जाए कि भाई पिता का नाम, तो शायद पिता का नाम सभी जानते होंगे, पर पिता का नाम, मृत पिता का नाम, ये तो बस मुश्किल होने लगता है। और यहाँ तलक तो हम यह नहीं कहने वाले हैं कि जो बीच भारत को छोड़ करके और सूरीनाम 150 साल पहले गए थे, उतना दूर तो दूर की बात है। लोग अपना खुद का गोत्र और अपना खुद का पितृ का नाम गमन, यानी कि उस पर चिंता ही नहीं करते, और पितृ दोष जब लगते हैं तो औरों से जा जा करके कितना लूटे जाते हैं, उसके बारे में तो आज कोई चर्चा नहीं होगा। चर्चा बस यही के बारे में होगा कि हम क्या कर सकते हैं अपने पितरों के अंतर्गत।
2: जरूर, लेकिन जब आपने ये बोल ही लिया कि अपने पितरों के नाम याद होना चाहिए, तो जब आप भारत में जाते हैं तीर्थ यात्रा में, जैसे हरिद्वार है और बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जहाँ भी जो धाम है, वहाँ पे जब भी आपके कोई पिछले पितर गए होंगे, लोग गए होंगे, आपके दादा परदादा कोई भी गए होंगे, तो वहाँ से वो खाता होता है एक पंडितों के पास, इतना बड़ा खाता,
0: पंडा के,
2: पंडा,
0: हाँ जी,
2: तो पंडा के पास सब लिखा रहता है कि आपके जितने लोग यात्रा गए वहाँ पे गए, वो पूरा रजिस्ट्रेशन रहता उनके पास, आपका दादा का नाम ये था, परदादा का नाम, इसका नाम, उसका नाम, उसके उसका नाम, मैंने खुद जाके देखा है। तो जब गए वो डेट लिखी रहती कब गए थे वो, उन्होंने क्या क्या कराया था वहाँ पे पितृ पक्ष के लिए और क्या कराया था, सब चीज लिखा रहता है
0: उसमें, मिल जाता है,
2: उसमें मिल जाता है खाता पंडित पंडा के पास।
0: इस बात पे ध्यान देना कि आप, हम लोग कार्यक्रम बनाते हैं ज्योति का प्रकाश, और इसमें जरूर कुछ ना कुछ अपना जीवन के ज्योति के अंतर्गत में कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, उसमें और प्रकाश जरूर आएगा। और जब आप अपना पुरखों का अपना, और जैसे कि भाई राजेंद्र जी जो हम सबको संदेश दे रहा कि कहाँ पर आप जा करके उसका और अपना, यानी कि पितरों तथा अपने पुरखों के बारे में, अपने गोत्र के बारे में पा सकते हैं। राजेंद्र जी, देखते हैं कि शांता जी पिटारा से क्या भर के लाए हैं।
2: जरूर शांता जी,
0: हम सब पर
2: अपना पिटारा, तो शांता जी का पिटारा तो हमने यहाँ सेट कर रखा है।
1: राजेंद्र जी सभी सेट करके रखिए, अभी आपको सुनाएगा
2: जी।

0: माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता। तो जैसा कि अभी सुन रहे थे संजय जी का प्रोग्राम कि उन्होंने क्या खाया नहीं खाया, लेकिन वो नहीं पता चल पाया अभी तक। संजय जी बताइए कि आपने खाया क्या है।
1: राजेंद्र जी, बताने का दिल है पर खाने का दिल भी और है, तो अभी जरूर बताएंगे कि क्या। और आज का समय थोड़ा निकल गया था, अभी उसके बारे में और चर्चा किया जाएगा।
0: जरूर।
1: आज हमारा विषय है राजेंद्र जी, जो कि पर्व श्राद्ध अंतर्गत, और उसके बारे में हम सबको कुछ जानकारी को हम लोग लेकर आए हैं दोस्तों, और देखेंगे कि क्या हम सबके लिए और हमारे विशेषज्ञों लोग तैयार करके रखे हुए हैं।
0: हाँ जरूर।
1: तो राजेंद्र जी, आपके पास क्या संदेश है?
0: सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि पितृ चरण में नमन करी, ध्यान धरी दिन रात, कृपा दृष्टि हम पर करी, सिर पर धरे दो हाथ।
1: सिर पर धरे दो हाथ। तो राजेंद्र जी, पितृ
0: दो हाथ नहीं, सिर पर धर दे हाथ।
1: हाँ,
0: धर दे,
1: तो वो पितरों ऐसा अपने पुत्रों के कर सकते हैं।
0: हाँ, पितरों का जो आशीर्वाद होता है वो पुत्रों पे बहुत लगता है, उसी आशीर्वाद से सब लोग बहुत फूलते फलते हैं।
1: पर राजेंद्र जी, ऐसा होता है लोग तो डरते हैं अपने पितरों के कार्य करने के लिए।
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं डरना नहीं है पितरों के कार्य करने
1: वो
0: के लिए।
1: कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं कि भाई मैं अपने पितरों के लिए कुछ करना चाहते हूँ, और जरूर करने का इच्छा भी रखते होंगे, पर उसमें ये प्रश्न करते हैं कि भाई अगर जब मैं ये करूँगा तो मेरे बच्चों को ये भी करना पड़ेंगे।
0: तो आगे बढ़ते हैं इसी में, ये कदम्ब है आपका, ये कुटुंब है आपका, आपका परिवार, आपके आशीर्वाद से फले फूले संसार। तो पितरों के आशीर्वाद से तो हम लोग हैं, तो कैसे डरने का विषय है?
1: पर लोग तो डरते हैं।
0: किस बात से डरते हैं?
1: और खास करके राजेंद्र जी, मैं तो देखा हूँ कि कहीं पे गए थे, कहीं पे गए थे, किसी का मृत्यु हो गया था, तो वहाँ हम लोग सत्संग करते हैं ना, तो जाकर के रामायण पाठ कहीं और गरुड़ पुराण पाठ होता है, तो वहाँ गए तो वहाँ लाइट ऑफ हो गया।
0: हो,
1: अब लाइट ऑफ हो गया, कैसे लाइट ऑफ हुआ ये पता नहीं है, पर लोग डर गए। जैसे ये पितर के बात होता है इसमें, या लाइट के बात होता
0: नहीं,
1: है
0: इसमें, नहीं, इसमें पितर का बात नहीं,
1: के बात होता है,
0: इलेक्ट्रिसिटी की बात है। हो सकता है उस समय लाइट चली गई हो, या कुछ ड्रिप हो गया हो, ट्रिप हो गया हो, तो उसका पितर का कोई बात नहीं।
1: और राजेंद्र जी, बात ये भी है कि ये कार्यक्रम जो चल रहे है, आज का विषय रखा गया है, तो इसमें भी संदेह है कि पितर और प्रेत इसका अंतर क्या है, तो अभी ये हम सबको भी सुनने को मिलने वाले हैं। तो और आ चुके हैं
0: सांद्रा जी,
1: सांद्रा जी आ करके पहुंच गए हैं स्टूडियो में,
0: तो
1: भूल कि क्या हम सबके लिए।
0: तो दो लाइन और पितरों के बारे में कह देते हैं। भूल चूक सब क्षमा करी, करी मेहर भरपूर, सुख संपत्ति से घर भरी, कष्ट करी सब दूर। तो क्यों ना एक छोटा सा हम भजन चला दें।

0: अवनित हित परिवार, तो पितरों के समान आज हमारे बीच सांड्रा जी भी उपस्थित हुई हैं। तो आप कुछ सुना है कि बहुत बढ़िया चीज लेके आई हैं। सांड्रा जी बताइए।
1: आप सबको मेरा भी नमस्कार। तो एक लाइन मैं भी बोलना चाहती हूँ।
0: जरूर।
1: पितरों के लिए, आप हमारे हृदय में, आपके हम संतान, आपके नाम से हैं जुड़े मेरे हर पहचान। आपके ऋण बढ़े सदा, नहीं चुके जाए सात जन्म भी हम पढ़े, वेद पुराण बताए। तो आप बताइए राजेंद्र जी, मैंने क्या कहा?
0: आपने वेद पुराण की बात कही, क्या और आपने क्या कहा?
1: मैंने कहा कि आप हमारे हृदय में हैं,
0: आप हृदय में हैं, पुराण में
1: संतान आपसे जुड़े हैं, आपकी पहचान है, पितरों से हमारा पहचान है। ये ऋण बढ़े सदा, नहीं चुकाए जाए सात जन्म भी हम पढ़े, वेद पुराण बताए।
0: हाँ, आपने बताया कि जो पितरों के जो हम पे ऋण है वो नहीं चुकाया जा सकता है, अगर सात जन्म भी लें तब भी नहीं चुकाया जा सकता है। बहुत अच्छा आपने जो बताया है। बढ़ते हैं आगे कि पितरों के समान और क्या क्या चीजें हैं। तो तीन वृक्ष, तीन पक्षी, तीन पशु और तीन जलचर। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का पितृलोक चंद्रमा की ऊर्ध्व भाग में माना गया है, धर्मलोक के अनुसार माना गया है। और दूसरी ओर अग्निहोत्र कर्म से आकाशमंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं, पक्षियों के लोक को भी पितृलोक कहा जाता है। तो जहाँ पे पक्षी उड़ते हैं वो लोग उस लोक को पितृलोक कहते हैं। तीसरी ओर कुछ पितर हमारे वरुण देव का आश्रय लेते हैं।
2: राजेंद्र जी, जैसे कि आपने कह रहे हैं कि पक्षी, तो खास करके मैं कुछ फिल्मों में देखे हैं और व्हाट्सएप बरेक पे भी भेजा जाता है कि कोई प्रकार के पक्षी भी होता है जिसे, और ये पितृ पक्ष यानी कि पर्व श्राद्ध में उसे कुछ खाने पीने के दिया जाता है।
0: कौवा, कौवा,
2: वो कौवा होता है, तो उससे।
0: हाँ, कौवा की बात अभी हम आगे आने वाली है,
2: आने वाले।
0: अतः पितरों की स्थिति जल में भी बताई गई है। वरुण देव जल के देवता हैं और पितरों की स्थिति जल में भी बताई गई है। तीन वृक्ष की सबसे पहले बात करेंगे। पीपल का जो वृक्ष है, पीपल का वृक्ष बहुत पवित्र है। एक ओर इसमें जहाँ विष्णु का निवास है वहीं यह वृक्ष रूप में पितृदेव हैं। पितृपक्ष में इसकी उपासना करना या इसे लगाना विशेष शुभ होता है। और दूसरा नंबर है बरगद का वृक्ष। आगे का संदेश बरगद का वृक्ष है। बरगद के वृक्ष में साक्षात शिव निवास करते हैं। अगर ऐसा लगता है कि पितरों की मुक्ति नहीं हुई है तो बरगद के नीचे बैठकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और जो तीसरा वृक्ष है वो है बेल का वृक्ष। बेल आप जानते हैं?
1: बेल वृक्ष, बेल का पत्र
2: जो शिव जी पे चढ़ाया
1: जाता है, शिव जी पे चढ़ाया जाता है,
2: बेल पत्र
1: पे चढ़ाया जाए।
0: बेल पत्र होता है पत्ता और बेल पत्थर होता है फल।
2: फल,
0: हाँ, उसको पत्थर, वो पत्थर जैसा मजबूत
2: बड़े बड़े।
1: राजेंद्र जी, हम लोग बात कर रहे हैं बेल ब्रादरे के।
0: बेल ब्रादरे, यदि पितृपक्ष में शिव जी को अत्यंत प्रिय बेल का वृक्ष लगाया जाए तो अतृप्त आत्मा को शांति मिलती है। जिसकी आत्मा को शांति न मिले वो बेल के वृक्ष लगाने से मिल जाती है। अमावस्या के दिन शिव जी को बेल पत्र और गंगा जल अर्पित करने से सभी पितरों को मुक्ति मिल जाती है।
3: अगर सोने, अगर जैसे आपने कहा राजेंद्र जी कि अमावस्या के रोज अगर पितर पक्ष जो में अगर आपको मौका नहीं मिला करने के लिए कि कोई हालत जैसे हो, तो अमावस्या के रोज आप कर सकते हैं जी।
0: और इसके अलावा अशोक, तुलसी, समी और केले के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए।
1: हाँ जी, केले में तो साक्षात विष्णु भगवान निवास करते हैं।
0: हाँ, केले का वृक्ष भगवान विष्णु का ही है।
2: आगे चलते हैं राजेंद्र जी, क्योंकि संदेश ज्योति का प्रकाश में यही लक्ष्य रखा जाता है कि कुछ ना कुछ संदेश हम सबको प्राप्त हुए। जैसे कि पता है कि शांता जी भी कुछ सुंदर सुंदर गीतों को लेकर भी आए हैं, तो देखते हैं राजेंद्र जी क्यों ना एक गीत की ओर बढ़ते हैं, फिर हाँ। आगे हम सब कार्यक्रम बढ़ाने वाले हैं।
0: जरूर, जरूर।

0: राजेंद्र जी, कहा जाता है कि ईश्वर दुनिया के सबसे बड़ा और डॉक्टर है। प्रार्थना दुनिया के सबसे बड़ी दवा है। तो आगे का कार्यक्रम में आप क्या सुनाने वाले हैं, क्योंकि डॉक्टर और दवा के बारे में तो हमें जानकारी मिल गया है, पर ये आज का विषय जो रखा गया है ये श्राद्ध अंतर्गत कौन सा संदेश, क्योंकि शांता जी भी तैयार हो गया है नीदरलैंड्स में कुछ हम सबको सुनाने के लिए। और कार्यक्रम में जो अब हमारे कैसे कहा गया था,
1: मिस सेंड्रा
0: भी है, और मिस सेंड्रा से आग्रह करूंगा कि आप क्या लेकर आए हैं आगे सुनाइए।
2: हाँ जी, मेरे पास भी दो लाइनें बची हुई है कविता के। हर दिन हर पल आपसे मांगे ये वरदान, वंश भले बताते रहे बढ़े मान सम्मान। ये पितरों से होता है। घर पिंडे में आप विराजे ये ही अरज करे, कहत भक्त हम शरण आपके निस दिन महर करे, ओम पितर पितरायने नमो नमः।
0: तो राजेंद्र जी, सांद्रा जी काफी चतुर है और सामान लेकर आए हैं जिसे हम सबको, और काफी जानकारी छोड़ दिए हम सबके लिए।
1: हाँ, सांद्रा जी तो तैयारी कर गई है, सुरनाम जाती रहती है और पितृपक्ष के बारे में पढ़ती रहती है, तो उनको तो ज्ञान ही है।
0: ऐसा बहुत बढ़िया बात है सांद्रा जी, जो आपने भी संदेश दिए। ये पर्व श्राद्ध अंतर्गत जो पितृपक्ष से हम सब जानते हैं, इसमें कौन सा जानकारी अभी और राजेंद्र जी रखने वाले हैं। और दोस्तों, मैं आपसे अभी से कह देता हूँ कि शांता जी भी कुछ तैयारी करके लेकर आए हैं, और ना सिर्फ शांता जी के पिटारा में सुंदर सुंदर गीतों हम सब के लिए रहते हैं, पर शांता जी कुछ नई दलांस में लेकर के हम सब के लिए आए हैं। पर राजेंद्र जी, सब कहते हैं कि लेडीज फर्स्ट, पर क्यों ना आप आज कुछ संदेश और सुना देते हैं, तो फिर हम सब शांता जी की ओर बढ़ते
1: हैं। हाँ, जरूर। आगे का जो संदेश है कौवा के बारे में, कौवा को, कौवा यानी कागा
2: शनि देव के वाहन।
1: कौवे को अतिथि आगमन का सूचक और पितरों का आश्रय स्थल माना जाता है। श्राद्ध पक्ष में कौवा का बहुत महत्व माना गया है। इस पक्ष में कौवा को भोजन कराना अर्थात अपने पितरों को भोजन कराना माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कोई भी क्षमतावान आत्मा कौवे के शरीर में स्थिर होकर विचरण कर सकती है।
0: तो राजेंद्र जी, कौवा के बारे में कुछ और हम सबको जरूर बताइए, पर हम लोग को, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर है और फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के, हम सबके जरूर समय दिए है कार्यक्रम करने को, पर हम लोग के कुछ परप्लेक्सिंग होते हैं और हम सब न्यूज़ की ओर पहले बढ़ते हैं। और न्यूज़,
1: हाँ, न्यूज़ से जब कौवा की बात चली गई तो एक मिनट की बात और रह गई है। जब कोरोना का समय आया तो कौवों ने एक मीटिंग करी सबने।
0: हाँ जी।
1: श्राद्ध पक्ष को देखते हुए कौओं की आपात मीटिंग बैठी। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जिस घर में बूढ़े माता पिता के साथ बुरा व्यवहार होता है, उस घर के अन्न जल का बहिष्कार किया जाएगा। जो जीते जी अपने माता पिता को पाल न सके, वे मरे हुए लोगों को पितृपक्ष पितृभोग लगाने की कोशिश के काबिल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कौओं ने कैसी मीटिंग करी है, ये देखो। और लास्ट ईयर जब कोरोना के समय कौओं ने एक मीटिंग और करी थी कि भाई इस बार कौन

ऐसा रहेगा क्योंकि कोरोना का समय है, इकट्ठे नहीं जाएंगे, अलग अलग सब लोग जाएंगे, तो उनकी ड्यूटी अलग अलग लगी थी कौओं की। तो संदेश हमने पिछली बार देखा तो बड़ा बढ़िया संदेश था वो भी, इस प्रकार से कौओं की बात चली थी। तो क्यों ना आगे अब न्यूज की ओर बढ़ा जाए और इसके बाद सारा जो वृतांत रखा जाए उसकी बात करेंगे।

अल्लाह मेरी तौबा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठा लो। मूवी सिकंदर निकंदन अख्तन सस्तका, जो इसका जो म्यूजिक बजाया गया है शंकर जय किशन और हसरत जयपुरी का, जो हाथ है कलम जो से लिखा गया है वो हसरत जयपुरी है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रोग्राम को, अगले गाने को मैंने चुन पे रख चुका हूँ, दम मारो दम। चलो हरे रामा हरे कृष्णा। जीनातमन जीनातमन ने काम किया है देव अनंत जीनातमन और आशा भोसले की आवाज से दोस्तों। और देखा जाए ये भी आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है और म्यूजिक सजाया है एरदे बिरमन। चलो मिलके सुनते हैं एफर ग्रीन लव फॉर हिंदुस्तानी रेडियो से।

जी हाँ दोस्तों, दम मारुदम अभी आप सुने थे, दम मारुदम, और हम आपको ले जाते ही इस वक्त रंबा हो शंबा हो चलो हम सब सुनते हैं मूवी अरमान, और हम मिल के इसे सुनेंगे दोस्तों। चलो देखते हैं प्रोग्राम में क्या क्या नहीं है।

जहां रंबा हो शंबा हो मूवी अरमान उषा उत्तम पप्पी लहरी और इंदिवार आप सुन रहे थे दोस्तों। चलो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ याद आ रहा है, देखा जाए तो पप्पी लहरी का ये डांस नंबर है याद आ रहा है। पप्पी लहरी है डिस्को डांसर का ये जो गाना है और लाइरिक से अनजान जो इस हाथ चलाया है और म्यूजिक पप्पी लहरी का है। चलो हम आप लोग सुनाते ही डिस्को डांसर और मिथुन चक्रवर्ती ने इसमें काम किया है।

जब तो पप्पी लहरी की आवाज मूवी डिस्को डांसर, इसमें काम क्या है, मिथुन चक्रवर्ती याद आ रहा है। चलो हम ले चलते हैं दिलर मेहंदी की तरफ, और देखा जाए तो बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले चले, बल्ले बल्ले सब सुनते हैं। सुखवार है, वीकेंड आ गए हैं, रेड पुश हो या ब्लैक पुश हो उसके तफरा पर रखिए, एक बॉल मारिए, डोसा पकाइए, खाइए और कुछ नाच गाना भी कीजिए, क्योंकि वीकेंड थे दोस्तों। चलो मिलके सुनते हैं दिलर मेहंदी की।

जी हाँ दोस्तों, हो जाए तो बल्ले बल्ले दिलर मेहंदी का आवाज अभी आप सुन रहे थे। हम चलेंगे बोले तारा रा रा रा रा रा रा। चलो सुन के देखे, देखते ही मिलके हम आप लोगों को सुनाते हैं। देखा जाए तो बोले तारा रा रा रा रा भी मैंने गाने को देखा है और यहाँ है वो गाना, हम आपको सुनाते हैं बोले तारा रा रा रा। क्या हुआ यार, देखा जाए तो कुछ गड़बड़ हो चुका है इसमें। देखा जाए इसमें तो है कुछ और, हम इस गाने को रखते हैं, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो चुका है इसमें।

जी हाँ दोस्तों, जाने जा ओ मेरी जाने जा एस दे बिरमन। जी हाँ दोस्तों, चलो हम घर की तरफ देखते ही तो क्वाट फोर फिर है, इसका मतलब है हम दो गाने और चलाएंगे, उसके बाद न्यूज़ बयाम चलेंगे और हमारा कोलेखा, मैं नहीं जानता हूँ कौन सा कोलेखा, लेकिन एक ऐसा कोलेखा फिर से ले लेगा। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं, पढ़ते हैं आगे। और बोलो तारा रा रा दिलर मेहंदी, पंजाबी गाना है दोस्तों।

अरे बोलो तारा रा रा रा, दिलर मेहंदी को भी आप सुन रहे थे? चलो हम चलते हैं, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो क्या बन जाए।

जय दोस्तों, हर एक को हम यहाँ से राम राम कहते ही अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुह हो और खुदा हाफिज हो। हर एक को जुम्मा मुबारक हो। हर एक जो हमारा साथ दिया है हम उनको राम राम नमस्कार कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम को सुने हैं, पसंद भी करे हैं। काफ़ी लोग हैं जिसका फरमाइश से मैं दिन तख के ज़रूर सुनाऊँगा। यहाँ से हम बहुत विदाई लेंगे। दिन तख के मंगलवार को हम आपके साथ ज़रूर रहेंगे। यहाँ से हम न्यूज़ रखते हैं, कुछ बयान है, उसके बाद हमारा प्रोग्राम द्वारका ले लेगा राजन द्वारका हमारा कुलेखा जो प्रोग्राम को आगे ले जाएंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए जाने के लिए। राम राम नमस्कार और खुदा हाफिज हो। खुदा हाफिज हो।

चिरैया दैया बोले और कोना रंगा मुनुआ के साथ आपको ले गए, मैं बन गई हाय मिनुआ तोरे दीवाना। रेडियो फाउन ये पहला स्टेशन है, ये सब

कहता है कि मैं बन गई मीनुआ तेरे दीवाना, और सिर्फ मीनुआ के दीवाना नहीं पर हमारा संगीतकार गीत का दीवाना होता है।

जरूर से बुला देना अपना भौजी को। और ननदियन तो आप तो जानते हैं भौजी ना, ये बहुत चंचल होती है, कब किस वक्त आपके द्वारे पे आ जाए बधौवा लेके खुश खबर लेके। आपको पता नहीं, बस भौजी जी आप तैयार रहना ननदियन को स्वागत करने के लिए।

हेमान, आपसे बता दे, सिर्फ फ्राइडे सैटरडे के विवाह नहीं होता है, पर पूरे हफ्ता पूरा सप्ताह विवाह होता है, क्योंकि मुहूर्त कब किस वक्त में है ये आप विचार कर और

हमने देखे है स्टाथहुस में, या स्टाथहुस में नीदरलैंड में मैंने देखी है कि हर एक आधा घंटा पे विवाह होता है। फॉलखबोक द हेले वीक दोर हाफ यूर्च क्राइट मैन अंक वन ऑफ हु फेल टाइट यू हरे सर फिर टैप एंड अन द हैंड दर्फन वर्डन वेद स्टाथहुस है पे खसीन द हेले दाह दोर। हाँ, एक्ट पारा दी कोमें गासखान से कोमें एक्सो फ्रोलक एंड wensen wij ook vanuit Faan Hindustani Radio dat hun huwelijk leven ook zo gezellig, rooskleurig door mag gaan.

हाँ पापा जैसा कोई नहीं, हाँ क्योंकि पापा पापा होता है, मामा मामा होता है, और दोनों का प्यार बहुत बहुत जरूरी है एक बच्चा के लिए।

कोयलिया, इस बार क्या है मेरी को पता नहीं है, चलते हैं सुनने के लिए। मुझे पता हो गया है कि पिया बिना आए ना मोरे नींदिया, क्या हो गया है।

बरसन न लागे मोरे पिया कि पिया बिना आए मोर निंदिया। मेरे प्यारे सुनने वालों, आप सुन रहे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द एनख एख्त।

love, you are in love, he is and she is also in love. प्यार से ये सृष्टि रचाई गई है मेरे प्यारे सुनने वालों, तो हम और आपसे क्या कहे, लता और किशोर दास जी के आवाज में यहाँ से आपने और मैं भी सुने हैं। आपको ये बताना चाहती हूँ और वो क्या है, जरा हम यहाँ से आपके बता दें। झूठे प्यार को पहचाने, झूठे प्यार को पहचाने, सच्चा प्यार भी होता है। पर कहीं यहां से हम आपको इतला करते हैं कि झूठे प्यार को भी आप जरूर से पहचाने। तो पहला ये है जो आपको

सबसे बात में याद करे, जो आपको सबसे बात में याद करे, वो सच्चा प्यार नहीं कर सकते। जो प्रायोरिटी आपको नहीं देते, उसके मतलब है वो सच्चा प्यार आपसे नहीं करते। जहाँ पर एक दूसरे को समय ना दिया जाए, वहाँ सच्चा प्यार नहीं हो सकते। और जो आपको गलत काम के लिए जोर दे, वो सच्चा प्यार नहीं हो सकते। और एक ये भी है, जो अपने परिवार को छोड़कर आपके पास आए हैं, वो आपको छोड़कर भी जा सकते हैं, ये भी सच्चा प्यार नहीं है। आपके जीवन में ऐसे ऐसे घड़ी जो आते हैं, तो आप जरूर से इस पर गौर करें।

ये सुंदर सा गीत आपके लिए चला दिया गया है। गीत का बोल आई एम ए लव सोनू निगम महालक्ष्मी आयर।

प्यार ना ही सिर्फ अपने पति या पत्नी से किया जाता है, बच्चों से भी, परिवार से भी, माँ बाप से भी, पड़ोसी से भी, भाई बहन से भी। एक बार कभी मैंने कहा था कि अगर ये सब नहीं रहेगा, भाई बहन, बच्चे, माँ बाप, तो इनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है, कोई कोई भी नहीं। लोग कहेगा मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, पर माँ नहीं, मैं तुम्हारे पिता जैसी हूँ। जैसी ये शब्द, माँ माँ होती है, पिता पिता होता है, अपना बच्चा होता है, पति पत्नी अपने होते हैं। आप दूसरा स्त्री के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, दूसरा पुरुष के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, पर वो जो आपके साथ रह चुके हैं, जिसके साथ आपके गांठ बंधन हुए हैं, वो सिर्फ एक बार ही होता है। इस बात पर ये कहना चाहती हूँ कि अपने माँ बाप के साथ बैठो, अपने माँ बाप के साथ बैठो, उनसे बात करो, एक दिन वो खुद ब खुद खामोश हो जाएंगे। उन्हें आज़ाद छोड़ दो, अपने माँ बाप को आज़ाद छोड़ दो, खर्च करने दो, अपनी मर्जी से जीने दो, एक दिन वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ जाएंगे। उन्हें बार बार ना टोको, जब वो खामोश हो जाएंगे तुम उनकी आवाज सुनने को तरस जाओगे। जितना हो सके, जितना आपसे हो सके, उनका आशीर्वाद लो। जितना आपसे हो सके अपने माता पिता का, अपने बुजुर्ग का आशीर्वाद लो, उनकी सेवा करो, और जीते जी अपनी गलती के, जीते जी अपने गलती के लिए उनसे माफी मांगो। जब वो चले जाएंगी, फिर तुम्हारे माफी मांगने का कोई कोई कोई फायदा नहीं होगा। उनके पास बैठो, उनके साथ खाना खाओ, एक दिन ऐसा भी आएगा वो चले जाएंगे, और तुम थाली में भोजन लेकर जब बैठोगे तो उनको, तो आप उनको याद करके रो लोगे, तो आप उनको याद करके रोने लगेंगे।

किशोरदास से, किशोरदास जी से हमने सुने कि मैं आशिक हूँ बहार का टाइटल सॉन्ग आपके लिए चला दिया गया है। फाहम रेडियो से आप और मैं जुड़े हैं।

इश्क हुआ आजा नचले फिल्म का नाम। सोनू निगम और श्रिया घोषाल जी की आवाज में इश्क हुआ। शब्द शब्द यानी कि बोली बोली जो आप और हम सुनते हैं ना, शब्द से खुशी मिलते हैं, शब्द से गम मिलते हैं, शब्द से पीड़ा भी मिलते हैं। ऐसे कोई कड़वा शब्द आपको कह दे तो आप जरूर घायल हो सकते हैं। शब्द ही मरहम है, शब्द ही मरहम है। आपसे कोई दो मीठे बोल दे तो आप जरूर से जो गम है वो भूल सकते हैं, पर जो गम आपको है वो कितने गहरा है ये मुझे पता नहीं। फिर भी शब्द ही मरहम होता है।

0: ये देखो ताजमहल,
1: लाल पत्थर का ताज।
0: ताज ही है, किसने लाल पोत दिया है?
1: इस इमारत का नाम बताओगे या मैं जाऊं?
0: हुमायूं का मकबरा। इतने पैसे नहीं थे कि तुम्हें आगरे ले जाके ताज दिखाऊं। सॉरी।
1: आज से हुमायूं का मकबरा ही मेरे लिए ताजमहल है। हमारी मोहब्बत जितना खूबसूरत है।

0: गुरुद्वारे में दाखिल होने से पहले सर ढक लेते हैं।
1: दरगाह में भी
0: मत्था टेकने से पहले हाथ मुंह धोते हैं,
1: सजदा करने से पहले भी।
0: दरगाह में कड़ा प्रसाद नहीं मिलता,
1: तबर्रुक मिलता है, मेरी इबादत

0: ताज।
1: हुमायूं का मकबरा।
0: हमारी मोहब्बत जितना
2: राहत फतेह अली खान और महालक्ष्मी आयर जी की आवाज में आपने सुने बोलना हल्के हल्के। सुनी हुई बातों पर भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। जी हाँ ऐ मेरे दोस्त, कि सुनी हुई बात पर भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वो भाग कभी नहीं सुनाएगा जहाँ वह स्वयं गलत था।

खुद के बारे में, खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो ना किसी फकीर से पूछो, बस कुछ देर आंख बंद करके, कुछ देर आंख बंद कर अपने ज़मीर से ज़रूर से पूछे।

प्रेम में पुरुष कभी पुरुष हुआ ही नहीं, प्रेम में पुरुष कभी पुरुष हुआ ही नहीं। वो स्त्री के छाती से चिपक कर एक छोटा बच्चा बन जाता है। और प्रेम में पड़ी स्त्री माँ के समान हो जाती है। आप सुन रहे हैं फावन हिंदुस्तानी रेडियो।

जो लिया तुमने जो लिया यहाँ से लिया, जो दिया यही पर दिया, जो आज तुम्हारा है, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन परिवर्तन

येशुदास जी की आवाज में, येशुदास जी की आवाज में फिल्म का नाम एक बार कहो, फिल्म का नाम एक बार कहो। नई खंतीन तख्त में ये पिक्चराइज किया गया।

कि चुप और मुस्कान जाने के अनखलिमलाख। इसमें फर्क क्या है? व्हाट इज दैट फर्शकिल? मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए, दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार है। मौन से यहाँ कई मुसीबतों को पास आने से रोका जा सकता है। मौन से यहाँ कई मुसीबतों को पास आने से रोका जा सकता है। तो मुस्कान से, एक मीठी मुस्कान से कई, एक मीठी मुस्कान से कई मुश्किल का हल निकाला जा सकता है।

0: क्या है?
1: ये दुनिया अगर मिल जाए तो आप ही बताओ आपको क्या चाहिए। फिल्म प्यासा से ये सुंदर सा गीत रफी जी की आवाज में। पत्थर की है दुनिया, पत्थर की है दुनिया, जज्बात नहीं समझती। पत्थर की है दुनिया, जज्बात नहीं समझती। दिल में क्या है, दिल में क्या है, वो बात नहीं समझती।

जिंदगी क्या है, रफी साहब की आवाज में दिल दिल को टटोल देते हैं ये सुंदर सुंदर गीत। माय गॉड, इंसानियत इंसानियत इंसान को इंसान बना देता है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देता है।

ज़िंदगी से ये सवाल किया जाता है कि ये बता दे मुझे ज़िंदगी, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह जी की आवाज़ में। इंसानियत इंसान को इंसान बना देता है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देता है। लगन लगन हर मुश्किल को आसान बना देता है। लगन यानी कि है दून है प्रोबेर। लगन हर इंसान को इंसानियत इंसान को इंसान बना देता है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देता है। लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने, लोग यूं ही नहीं जाते मंदिरों में पूजा करने। आस

या आवाज है आशा भोसले जी के। जी हाँ, आशा भोसले जी के आवार्थ में ये दर्द भरा गीत आपके लिए पेश किया गया। फूल और पत्थर फिल्म का नाम। मेरी प्रार्थना को ऐसे स्वीकार करो मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना को ऐसे स्वीकार करो मेरे प्रभु, कि जब जब सर झुके मुझसे जुड़े हर इंसान, मुझसे जुड़े हर इंसान की जिंदगी संवर जाए।

0: मीठा बोलना, मीठा बोलने और सभी को इज्जत करने के लिए।
1: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

इतने प्यार भरे बयान है मोहम्मद रफी जी की आवाज में। सवाल जवाब है, खुलक स्कैप यूरसेल्फ, खुलक स्कैप यूरसेल्फ, het leven wacht niet tot jij er klaar voor bent.

Wij mensen wachten de hele week op vrijdag. Mensen wachten de hele week op vrijdag. Het hele jaar door. Het hele jaar door op de zomer. En hun hele leven op geluk. Mijn lieve mensen, je wordt pas echt gelukkig als je stopt met wachten. Je wordt pas echt gelukkig als je stopt met wachten en het beste van vandaag maakt. En te genieten waarin je nu leeft. कल तो बीत गया, आने वाला कल क्या होगा ये तो पता नहीं, पर आज तो है, उसे दोनों हाथ से थामो और कुछ अच्छा बना लो। एक फिल्म में कई गीत होता है और उसका कई स्वरूप होता है, अभी आपने दो सुने, साज और संगीत। सवाल जवाब प्यार भरा था और यहाँ है एक दर्द भरा गीत।

माइट मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। हमने प्लेयर में तीन गाने रखे हैं, जी हाँ तीन गाने, चार गाने रखे हैं। अब सोचता ये हूँ कहाँ शुरू करूँ, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। रफ़ी साहब की आवाज़ में गीत आप सुनिए, फिल्म दो बदन में से है।

नैनों में बदरा छाए, ये गीत हमने निकाले हैं मदन मोहन के साज पर, मेरा साया में से, और हमने पेश की ओफर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। एक गीत हमने और प्लेयर में रखे हैं, ये सुबह के लाली के जिक्र कर रहा है। अब ये मुझे पता नहीं है कि सुबह ये गीत चलाना चाहिए या शाम को या दोपहर को या रात को, ये पता नहीं है, क्योंकि ये गीत मेरे दिमाग से निकल गया। इसका धुन कैसे है, बात कैसी है, आशा जी एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुना रहे हैं। फिल्म है अभी तो ये, अभी अभी तो झीले हैं, अभी तो झीले में से निकाल रहे हैं निकति सैफ न सैफ तक। चलो सुनते हैं, चलो एक बार मैं भी बेवक्त के शहनाई बजा दूँ।

लाली है सवेरे वाली फिल्म है अभी तो जी लें। नेगती सैफन सैफन तक आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए। दरअसल में ये गीत हमने पहली बार चलाया, पता नहीं धुप्पल में कैसे मिल गया। इसका म्यूजिक डायरेक्टर है जगमोहन बख्शी और सपन सेन गुप्ता। मुझे इस फिल्म के बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब जब हमने सुन लिए, देख लिए और जान लिए, तब ढूंढेंगे ये फिल्म कि कैसा फिल्म है ये। अभी तो जी लेने नेगती सैफन सैफन तक ये गीत हम आपको सुनाए ओ फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

इसी में प्यार की आबरू मदन मोहन के साज पर लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाए। मैं भी एक बेगीत बैठ के बहुत दिनों बाद सुन रहे थे, बहुत अच्छा लगा। इतने खो गए थे इस गीत में कि हमने भूल गए ये गीत भी चून करने को कि ये गीत कैसा है। चलिए हम आपको सुनाते हैं, मुझे भी नहीं पता कैसा गीत है।

गांधीवाने झूम के मैथ मुकेश की आवाज में आपको सुनाया गया ये गीत। तो चलिए ये बदली हुई गीत हम रखते हैं। हाँ

ये कश्मीर है, ये शानदार गीत आपको सुनाया गया पावन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है।

सदियों पुरानी अपनी कहानी और रफ़ी साहब और आयशा जी आपको सुनाए रवि के साथ पर फिल्म शहनाई में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए। चलिए अगर नंबर प्लेयर में ये गीत रखे हैं, इस तरह से सुनते हैं।

दिल से दिल की डोर बांधे ये शानदार गीत चला ऑफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। इस तरह से आ रहा है आपकी मांगी हुई गीत।

रफ़ी साहब का ये गीत है चांद की अंगड़ाई। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से।

मैं आशिक हूँ बहारों का, मैत मुकेश मुकेश जी आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, जबकि आप भी हैं, आप सुन रहे हैं और मैं धनाख में स्टूडियो में बैठकर चला रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए ये गीत लता जी और सुबीर सेन, सुबीर सेन के गाना बहुत कम चलता है। अपने हुए पराये में से निकलती फिर सस्त लता जी और सुबीर सेन जी।

लता जी और सुबीर सेन, सुबीर सेन मिलकर ये दोनों ये द्वैत आपको सुनाए हैं। फिल्म अपने हुए पराए में से निकाल कर हमने चलाए हैं निगती फिर सस्त का ये गीत है शंकर जय किशन के साज पर। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं कि प्यार में क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ तक कि डफली वाला भी बन जाते हैं लोग।

डफली वाले डफली बजा, ये गीत सुनाया गया। हमने पेश की ओवर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और ऐसे आ रहा है, हाँ इस तरह से है।

फिल्म भीगी रात में से निकाले हैं निकिती फैफिन सस्तिक के ये गीत है रोशन के साथ पर रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में हमने पेश किए। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं, जी हाँ, और वो है मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। क्या ख्याल है

मुझसे भी खफा रहना, माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं। चलिए ये गीत तो सुनाए बिना हम आपको नहीं जाएंगे।

महेंद्र कपूर जी और लता जी मिल के आपको सुनाएं। ये प्यारा गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में, फिल्म घर बसा के देखो में से हमने निकाल कर ये चलाए हैं।

गा दीवाने झूम के मैथ मुकेश की आवाज में आपको सुनाया गया ये गीत। तो चलिए ये बदली हुई गीत हम रखते हैं। हाँ

ये कश्मीर है, ये शानदार गीत आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है।

सदियों पुरानी अपनी कहानी और रफ़ी साहब और आयशा जी आपको सुनाए रवि के साथ पर फिल्म शहनाई में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए। चलिए अगर नंबर प्लेयर में ये गीत रखें, इस तरह से सुनते हैं।

दिल से दिल की डोर बांधे ये शानदार गीत चला ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। इस तरह से आ रहा है आपकी मांगी हुई गीत।

रफ़ी साहब का ये गीत है चांद की अंगड़ाई। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से।

मैं आशिक हूँ बहारों का मैत मुकेश, मुकेश जी आपको सुनाए ये शानदार गीत, जबकि आप भी हैं, आप सुन रहे हैं ओ मैं दनाख में स्टूडियो में बैठकर चला रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए ये गीत लता जी और सुबीर सेन। सुबीर सेन के गाना बहुत कम चलता है। अपने हुए पराये में से निकली फिर सस्त लता जी और सुबीर सेन जी।

लता जी और सुबीर सेन मिलकर ये दोनों ये द्वैत आपको सुनाए हैं। फिल्म अपने हुए पराये में से निकाल कर हमने चलाए हैं निकती फिर शस्त्र का ये गीत है शंकर जय किशन के साज पर। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं कि प्यार में क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ तक कि डफली वाला भी बन जाते हैं लोग।

मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सुनने वालों के हिम्मत में अदाबर्ष नमस्कार। आज जबकि मंगलवार है, अक्टूबर की 6 तारीख, जो बीमार है, लाचार है, खास करके हॉस्पिटल के अंदर है, तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं। जिनके घर में शादी या सालगिरह है, फाओ रेडियो के फूल टीम की तरफ से मुबारकबाद और बधाई पेश हो। जो लोग इस वक्त सफर पर जा रहे हैं, सफर मुबारक हो। जो लोग इस वक्त गैर मुल्क से यहाँ नीदरलैंड में आए हैं, उसको मैं खैर मकदम कहती हूँ। हो सकता है कि किसी के घर पर कोई दुख की घड़ी आन पड़ा, तो यकीनन हम आप सबके गमी में शरीक है। आज के प्रोग्राम में आप क्या इंतजार कर सकते हैं? इश्तिहारे, कुछ मिले जुले नगमे, नए और पुराने नगमे, सब मिला जुला कर कोशिश करूंगी 3 बजे तक आपकी खिदमत करने को। खिदमत करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हाजिर है खुद मैं, बीबी सहबा रहीम बख्श। 3 बजे तक प्रोग्राम को सुनते रहना। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से हम प्रोग्राम को पेश करेंगे, आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए मेरे हिस्से का प्रोग्राम के ओपनिंग सिलेक्शन आप सुनेंगे।

सुराही कार गर्दन कोयल सी है आवाज। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफी से गीत सुन रहे थे मेरे हिस्से का प्रोग्राम के ओपनिंग सेलेक्शन।

और बेशक दिल बहलता है आपके आ जाने से। अभी आपने मोहम्मद अजीज और साथ में साधना सरगम से गीत को सुन रहे थे।

हसीन हसीन वादियों भी आपने अनवर हुसैन से गीत को सुन रहे थे। इसमें देखा जाए तो दो मिनट बाकी डेढ़ बजने में आप फाहों रेडियो पे चुने, हमारा पता है न्यूटन, माफ कीजिए, Johan Winkelskade nummer 351. Daar kan nummer 365-2247. Rikam Kelie.

रब्बा तेरा मैं शुक्र मनाऊं कि मुझे मेरा यार मिल गया। अभी आपने लता मंगेशकर, उदित नारायण और विनोद राठौर से गीत सुन रहे थे, संगीतकार राम लक्ष्मण। चांद सितारों के रोशनी, चांद सितारों के रोशनी हमेशा जगमगाते रहे, छोटी सी दुनिया में खुशियों भरी फूल बरसाते रहो। और जो गीत हम पेश करने को जा रहे हैं, खास करके बारन दरख्त के रहने वाली बीबी साहिबा राफिया रहीम बख्श, जो इस वक्त इंटरनेट के द्वारा रेडियो फाहन का प्रोग्राम सुन रहे थे, चलिए आपके नाम पर मैं ये गीत को पेश करती हूँ।

मोहब्बतों का सफर है हमारे साथ चलो बेशक। अभी आपने पंकज उदास कविता कृष्णमूर्ति से गीत सुन रहे थे। इसमें देखा जाए तो 9 मिनट बाकी है 2 बजने में।

सुल्ताना रे प्यार का मौसम आया। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर से गीत को सुन रहे थे रेडियो फाहुन के शाम के प्रोग्राम में। बड़े मुश्किल से मैंने पाया, बड़े मुश्किल से मैंने पाया मेरे चांद जैसी दुल्हन, सपनों में हजार बार आए मेरे घर पे पहली बार आए।

दिल तूने दिया और दिल मैंने लिया, अगर दुनिया जले तो हम क्या करें। अभी आपने मुकेश और साथ में गीता गद से गीत को सुन रहे थे। अगला गीत की तरफ हम आप सबको लेकर चलती हूँ।

0: कमाते कमाते उम्र गुजर गई। अभी आपने गीत को सुना रेडियो फाहुन के मंगलवार की शाम के प्रोग्राम में। इसमें देखा जाए तो 2:20 व्यतीत हो चुका है। हमारा और आपका मिलन सिर्फ 3 बजे तक है। 3 बजे के बाद रेडियो फाहुन के अनुसार साथी के जरिए से बाकी के प्रोग्राम आप सुनेंगे।
1: ना कहीं छाई बदरिया फिर भी मोरे जियारा में चमके, अरे थम थम कोई बिझुरिया।
2: वाह वाह वाह, तो हर जवाब नहीं

0: बिना बदरा के बिजुरियां कैसे चमके, अभी आपने मुकेश और साथियों से गीत को सुन रहे थे।
1: शिमारू विंटेज

नीली नीली घटा भीगी भीगी नशा। भी अपने मुकेश और आशा भोसले से गीत को सुन रहे थे। एक मिनट बाकी है ढाई बजने में।

सबसे हंसी हो और सबसे जवान हो, आज मेरी नजर में आई हो। अभी आपने महेंद्र कपूर और आशा भोसले से गीत को सुन रहे थे।

एक हजरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिला, भी आपने मुकेश से गीत सुन रहे थे। एक गम और कितनी दीवारें, एक गम और कितनी दीवारें, एक फूल और कितनी कांटे, एक राही और कितनी मंजिलें, एक दिल और कितनी अरमाने, एक जिंदगी और कितनी घटाएं।

कोई कह दे जमाने से जाके कि हम घबरा के मोहब्बत कर बैठे। अभी आपने आशा भोसले से गीत को सुना। संगीतकार ओपी नैयर, इस गीत का लेखक है अजीज कश्मीरी।

डफली वाले डफली बजा, ये गीत सुनाया गया, हमने पेश की ओवर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और ऐसे आ रहा है, हाँ इस तरह से है।

फिल्म भीगी रात में से निकाले हैं निकिती फेफिन सस्तिक के ये गीत है रोशन के साथ पर रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में हमने पेश किए। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं, जी हाँ, और वो है मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। क्या ख्याल है

0: अभी हमसे
1: मुझसे भी खफा रहना, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं। चलिए ये गीत तो सुनाए बिना हम आपको नहीं जाएंगे।

महेंद्र कपूर जी और लता जी मिल के आपको सुनाए हैं। ये प्यारा गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म घर बसा के देखो में से हमने निकाल कर ये चलाए हैं।

हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9753 5 6 तक 3 तक 7 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

और मैं पल दो पल का शायर शायर और शायर हूँ। तो ये गीत को है सलमा और सबीना का तौबा तौबा मामा मिया।

और तौबा तौबा चक्कर में न आना, और बुरा है जमाना, सलमा और सबीना का ये सॉन्ग है। तो ये गीत कौन है दोस्तों, ये भी एक यूपी पोल पद्मश्री मोहम्मद रफी का एक हिट सॉन्ग है, जो यहां से हम आपको सुनाते हैं। तू इस तरह से मेरे जिंदगी में और आना, कौन इस तरह से आना, ये गीत आपको बताते हैं।

ओए जानी चमने और तेरा गोरा गोरा बदन में क्या हलचल मच चुका है। ओहो आशा जी रोमांटिक सॉन्ग वक्त सॉन्ग के नाम है जब हम जब जमीन पर वो फिकर नाम है वक्त 1965 का।

हम जब सिमट के आप और बाहों में आ गए, और वो है महेंद्र कपूर का ये जोंग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला जोंग के लिए। तो ये क्या है दोस्तों, हम सफर मेरी हम सफर, और वो नाइटिगेल नाइटिगेल, और वो है लता जी का ये सॉन्ग है।

हमसफरी मेरी हमसफरी, और ये बहुत बेमिसाल जोन है हमारी यारो हमारी दोस्तों। तो अगला गीत के ओर हम चलते हैं। न्यू निवर रे तुम्हारी नजरी क्यों खफा हो गई, और गुस्सा मत कीजिए पदमा श्री मोहम्मद रफी, और नई ये लता जी का मूवी का नाम है दो कलियां।

तुम्हारी नजरें अरे क्यों खफा हो गई हैं और खता बस्त दो। दोस्तों ये एक मस्त भरी सॉन्ग जो आपको हम सुनाने जा रहा है हेमंत दादा का, ये सॉन्ग है।

आपके प्यार में कभी कोई कवि ना बन जाएंगे। तो हम और एक चलते हैं, जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार अभी तक नहीं मिला है।

और जीवन भरे ढूंढा जिसको वो प्यार तो नहीं मिला हमारे यारो। तो यहां पर हम चलते हैं किशोर दादा के ओर, और किशोर दादा आपको क्या सुनाते हैं।

0: जवानों कहा अब तुम हो जवान मेरी जान धड़कपन छोड़।
1: और दोस्तों देवानंद का ये फिल्म है जो आप लोग को देखना चाहिए, इट इज हील मूवी फिल्म है। तो हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर। ये भी एक सॉन्ग है जो चोरी चोरी जो तुमसे मिली, नाइटिंगेल लता मंगेशकर और करोड़ों का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस माइती मुकेश का ये सॉन्ग।

और तुमसे हो हसीना कभी तो मोहब्बत तो मैंने करनी थी। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है, मूवी का नाम है फर्श 1967 के सॉन्ग थे। उसके बाद हम चलते हैं आशा जी की और आशा जी मूवी का नाम पूजा का फूल और आशा भोसले का ये सॉन्ग है।

0: परवर का ये सॉन्ग है और आप जानते हैं रफी साहब कितना सुंदर सुंदर गीत को गाया है, तो ये आप सबके लिए भी है।
1: There is no need for that. They are talking some high way.

और आप नाराज खुदा कहने करे दोस्तों क्या जरा ठहर तुझे समझाऊं। पूजा का फूल है, मोफी का नाम है, नाइटिंगेल लता जी का सॉन्ग है।

करारे साहे जय मुखर्जी विजयंती माला का ये फिल्म इशारा जोंगा और ये नाम है। और दोस्तों ये सब पुराना पुराना गीत कितना अच्छा लगता। ये सॉन्ग जो है दोस्तों पुराने गीतों की बाहर सॉन्ग है जो मेरे ख्याल से न सिर्फ मुझे आपको और आपकी बगल वाला या बगल वाली को भी अच्छा लगेगे। और लातवे खनिटे में और निमर्स फन मेरे दिलिए पुकारे आजा। मूवी का नाम है नागिन।

आजा मेरा दिल ये पुकारे आजा। लता जी और तलत महमूद का ये जोन थे। दोस्तों हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर, और वो है अल्लाह जाने क्या होगा आगे। मनोज कुमार हरियाली और रास्ता का ये जोंग है हमारे यारो, हरियाली रास्ता का ये जोंग है।

और अल्लाह तो सबको जानते हैं कि इश्त में क्या क्या हो जाती है। तो दोस्तों इश्त में बहुत कुछ हो जाते हैं। तो हम चलते हैं इसके बाद में, हम चलते हैं मुझसे इतना प्यार मत करो लता जी तलत महमूद का ये सॉन्ग है, मुझे इतना ज्यादा प्यार मत करो कि मुझे अपने आप पे गर्व हो जाए।

और इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल एक मैं हूँ जो बादल आवारा जो यहाँ से वहां तक। और वो चलते हैं तदलुत महमूद का और नाइटिगेल लता जी का जोंग थे आशा परीक सुनील लतीश ने काम किए। उसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों और वो है नाइटिगेल लता मंगेशकर और को किशोर कुमार का ये सॉन्ग है लिखा है तेरी आंखों में और आपकी आंखों में क्या है आपकी आंखों में क्या है ओ तो आपको पता है कि किसके सपने आप देख रहे हैं।

और दोस्तों लिखा है तेरी आंखों में, और आपकी आंखों में क्या लिखा है आपको तो पता है। साथ ही साथ हम चल रहे हैं कि पन्ना की तमन्ना में नाइटिंगेल लचा जी किशोर दादा का ये सॉन्ग है। देवानंद सिन्हा तमन ने इस फिल्म में काम किया, इस मूवी में क्या, और पूछा है कि तुम्हारे तमन्ना क्या है, पन्ना ने पूछ रहा है।

गौर मिल जाता है, हीरा मिल जाता है नैतिक लता जी का ये जोन थे। उसके बाद प्रेम चलते हैं मौफी के नाम असली नकली निकती होने द्रियन सस्तक का, जिसमें देवानंद ने काम किया है। हमारे दोस्तों मौफी के नाम है असली नकली का एक सॉन्ग है परमात श्री मोहम्मद रफी और नैतिक लता जी का सॉन्ग है, जिसमें शंकर जयस्कन का म्यूजिक पे इसे काम किया है हसरत जयपुरी के साथ में। तो हम चलते हैं मूवी का नाम है असली और नकली।

से मान लिया है मूवी के नाम थे। असली नकली के बाद में हम जाते हैं और मधुबाला की ओर परमाशीर मोहम्मद रफी और आशा जी का सॉन्ग है अच्छा ये मैं हारी काला पानी जोंग मूवी का नाम है।

0: जला
1: और अच्छा ये मैं हारी चलो काला पानी का ये सॉन्ग है दोस्तों। ओल्ड एंड गोल्ड का प्रोग्राम आज हम चलाते हैं और ओल्ड एंड गोल्ड के बांध में अगला सॉन्ग की ओर हम जाते हैं। प्यार ही प्यार देखा है तेरी आंखों में बस प्यार ही प्यार पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है। मूवी के नाम है प्यार।

प्यार ही प्यार मूवी का नाम है हमारे दोस्तों। और हाल कैसा है आपका, ये हम नहीं पूछते हैं, किशोर दादा ने पूछ रहा है। मधुबाला मूवी का ये जोंग है।

और हाल कैसा है आपकी आप बता दीजिए, मुझे इतना प्यार है और किससे ये आप भी मुझसे बताइए।

पर ही तुमसे अपने ही दिल से पूछो, हम चलते हैं आओ आगे, हे आओ आगे, हे आओ आगे, हे आओ आगे, हे आओ आगे, हे आओ आगे।

दोस्तों जॉनी हमारा नाम है और हम आ गए हैं अपना प्रोग्राम को लेके। अभी एक मिनट बाद, दो मिनट बाद हम आपको रकलामे को लेके चलेंगे, उसके बाद हम अपना सूरीनामी न्यूज आपको सुनाएंगे। और घड़ी को देखा जाए तो हो चुका है अख मुनीतन वोर सूर इन मिनट उर आज 6 अक्टूबर 2026 है। इस वक्त हम स्टूडियो पे हाजिर चुका है और हर हफ्ता की तरह आज भी आप लोग को हम देश और विदेश के समाचार को हम सुनाएंगे। हमारा प्रोग्राम आप लोग नया नया खबर सुनते रहो।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने चांद, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जात, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी अदाब, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी और प्यार की पैगाम। आज भी आप लोग के रेडियो फोन के माध्यम से देश विदेश के समाचार को हम बताएंगे, समझाएंगे, पढ़ेंगे और सब सब करेंगे हमारे यारों, हमारे दोस्तों। और इसी चून से हम आपको लेकर पहले चलते हैं भैया फ्लिक फेल की ओर। तो बोले जॉनी बतिया कैसे है, कैसे है बतिया? तो बतिया ऐसे है नानी, बतिया ऐसे है कि सूरीनाम में भैया हम लोग जाने ला फ्लिक तो कई गो है नवाखे मुसबलाई से संदरई तो सब कोई जाने है, सौरखन होप के जानो, निकेरी के जानो है और तो बाकी और कुछ है ना है, लेकिन सूरीनाम में बहुत जबर समुद्रक्ष के इलिखाल इलिखाल फ्लिक्त फैलद हुआ बनावे है। जब पकड़ा जाए भैया तो सब जा है बॉम वॉम दाग ओके कुछ दाग ओके और फ्लिक फैल तो हमें भारी भारी होल कर दे कि जो ने अप्लेन हुआ ना उतर पाई मौसी बकी प्लेन वहां उतरे से पहले गड़ावन दृक्ष जलरवन फिर जाए के भर दे भैया। लेकिन बात अब देख फिन एगो मिलल है गोलियार्थ खबित में और है पारा में डिस्ट्रिक्ट पारा में फिनो एगो एलिखाल लैंडिंग्स बान मिलल है सूरीनाम देश के बातचीत हुए है और मिलल है 4 तारीख अक्टूबर में। तो लैंडिंग्स बान के साथे साथ हुआ पे बोलेगा फ्लिक्टोइक के बांती के स्पोर भी मिलल है कि हुआ प्लेन उतरान है, फ्लिक्टोइक उतरान है और ब्रांस्टोफ के बारिल पाई से जेमा तेलवन वाला रहा दोस्त तेल के बारिल भी मिलल है और बताए गई एगो त्वी मोरख मोतरख त्वी मोतोरख फ्लिक्टोइक हुआ जर के भसम हुई गए रहा दोस्त एगो प्लेन पाई से जो जर गए रहा दोस्त हुआ पे मलियन सब उतर गए रहा भैया हुई से के प्लेन हुआ में कुछ भैला सबन स्पोर बचावे खड़ो में आग लगाई जरा दे वन दृक्षवा उसे 100 गिना और महंगा है जो सबन फरफूर करी से। तो यहाँ बताए गए नार्कोटिका ब्रिखांड जो सूरीनाम में है इन लिखिंग दिंग्स अरस्तात सी टीम एकर बारे में गए ले सब ओरिएंटेर करी से भैया और बताई से कि कौन ची हुआ मिलल है वेख दिल लैंडिंग्स बांध पे मिलल है और बोले खबरें फुस्प्रेड ओवर द लेंथ लांग मेर फातन एंड जेरिकेंस भी रहा और बोले इन द ओम खीव वेट ओक आइड खबरां द तुई मोटो रख फ्लिक्टेड भी सबन पाई से और बताई गई है का फ्रे वेल सेकर आन खून हुए दैट है ओम ड्रग फ्लिक्टेड खात ओम मिसीना है ड्रग फ्लिक्टेड के बारे में एन अ ओवर लेख में द ओ एम वो सब बारी ला रहे गए बाकी न तुले एक को आदमी ना पकड़ाने भैया द फोन्स कॉम एंकल दाख ना दात Jennifer Simon tijdens haar jaarrede voor het dienstjaar 2027 op woensdag 30 september aandacht vroeg voor de aanwezigheid van kleine vliegtuigen in het achterland. Te bolle het staatshoofd gaf aan dat er meer informatie nodig is over wat zich in het binnenland afspeelt van de Suriname. Bon, Simons bolle raar bolle te lukken, jij binnenland mee ben jij, denk ik, kijk hoe illegale vliegtuigen, hoe aan pe oere he. To je baat he, hamare piare piare Suriname ke janta. To okar baat mee dosto, hum tari jaila. और आगे को अपना प्रोग्राम को लेके और बोले बंक जो सूरीनामे में भैया तू जइयो जइयो सूरीनाम के बंक में
और बोले हुआ पे जइयो पैसा स्टोर्ट करे और या दुकानदार बाटे या कहीं पे पैसा पठाइयो या सौदा में बहुत पूछताछ हुआ पे बंक करे है। तो जनता हुआ हैरान हुई के हमार पैसा है और तू कहे इतना पूछताछ तू करे है। यहाँ बताई से फील मैं श्री नाम हर कैन हर कफूल बोले तोर पैसा है बोले तू पैसा मांगे पर फैमिली बैतलात में देवे ली फरांसीर बोले हम मांगेला सौदा कीने और बोले एंड दान बखेट है फ्राख उर्च बैद बैंक तब शुरू करे बंकवा पूछे कि तू पैसवा कहाँ से पहले है कहाँ तू पठाइए का करिए। तो आदमी बहुत हैरान एकर बारे में सुरीनाम में बा और ऊपर से बंकवा पूछेगा कि काहे के तू पैसवा मांगे भरे वार फॉर इस बता ले और के हुआ ऑन फंग करी तू इ पैसवा बारे में तो के फकतूर बा। तो सोमख क्लांत सुख्तन अंदर वर्दन बोस हेट इज टॉक मेन खेल इज एन फील कोर द रिएक्शन एंड एरकंस इज द रिएक्शन बखलाइपलग मार एर इज ओक अन अंदर कांदी फाक onder belicht blijven mensen banken ke verplichte Suriname mee verplichte usapke kabule jane ke verplichte jane ke ki klantua paisua kaha paise drugs ke paisa na hoi bhaiya tu jane wetwas anmi bahut jabar kare abbe hum news mein batayli hai ki flightaik mila lega aur landings ban mila usap drugs unka paisun kaha hai kani ohi paisua na tu mange pathave dan mag niet zeven keer kali mag heel illegale na legale paisa pathawe thawe ke ohik mare banke reglemente dat ze dit gaat ondervragen mensen sommige klanten zuchten en andere worden natuurlijk boos maar de banken zijn wettelijk verplicht om alles te weten. 19 november 2022 mee, de wet ter voorkomen en bestrijding van de money laundering en de terrorisme financiering, kortweg WMTF, deze wetvervanging verving oudere regels en verplicht banken tot cliëntenonderzoek. 2024 augustus mee wijzig bij hen je beter te sluiten met de internationale standaarden. Dat betekent niet dat de bank u wantrouwt. Het betekent dat de bank moet kunnen uitleggen waarom een transactie plaatsvindt, zeker bij grote bedragen of betaling naar het buitenland. Want hoe heb je het mee, bhaiya, drugsdealer, loon, miljonair, bhaiya, je sab koi ke paisa maag pathawe ke, ta aadha den haak saban drugsdealer, ya kille wat bhai. Maar daarom is de regels, dat ze precies willen weten van waar komt de geld. Neem een eenvoudige voorbeeld, ya li kalega ki tu 5 jaar Amerikaan dala, bole naar een bedrijf het buitenland toe mange pathawe, bole de bank ziet het bedrag, maar niet automatisch het doel, bole bank wa khali bedrag hua deke, bhaiya, na deke tu paisa keke pathawe he. Als u zegt, ik koop goederen voor mijn winkel, dan is dat een begin. Ki hem dukaan ke sauda mangela, te bole u begin he. Maar bole bankwa bole he, ook me factuur dekha, ook om een factuur vragen. Niet omdat u iets fout doet, maar omdat de bank moet kunnen vaststellen dat de transactie past bij wat zij van u weet. Toen die banken waren, maar ja, elektrische geldovermaking vanaf $1000 tot €1000. Ja, wat we, de wet kent een specifieke regel voor incidentiële buitenlandse elektronische geldovermaking van $1000 tot €1000. Daarboven moet de bank extra informatie verzamelen, maar ook onder dat bedrag mag de bank vragen stellen. Als dat aanleiding voor is, het bedrag is niet de enige criterium. To bhaiya bataye gaye hai to bank se mange over mag kare $1000 ya €1000 ohu bank wa to se puchega kaise ba international sene aspraken gemaakt binnen de financiële action takes force bole twee aanbevelingen zijn belangrijk mensen recommendation ting over
cliënten onderzoek en recommendation 16 over transparantie bij de betalingen. Februari 2025 met bullet 10 aangepast, zoals de laagrisico klanten voor eenvoudig onderzoek mogelijk is. In juni 2025 met 16 aangescherpt om internationale betalingen veiliger en transparanter te maken. Deze herziende standaard moet uiterlijk 2030 zijn uitgevoerd. To janta ham janil gussa hai madrug zilarwan ke bahut paisa bhaiya to lon jano kon kon auto chalave hai kai kai machine ghare dharal hai 10 10 auto anamiya kaam dhanda na kare hai kaliya bhata bechata bazar mein ek baris baad auto beche shuru kari che to so jo paisa kahan se aaye bhaiya bhata bech ke to auto drive na khol paiye na bole sab auto drive ke bhata bech ke tu na 1 million je bhi mile ke ghumiye dollar ke banchit hai aur tu mange boli hum jaye netherlands mein nahi europe mein jale ko ghar ki ne to u million wa paiso tu dhalle rahiye man da kai hier in netherland nik koop op de juiste manier want dat is witwassen en voor de witwassen willen ze alles weten mensen dat wil ik even duidelijk aangeven op dit kop ja aur aage hum jaye hai Jij automobiles beskoten en aangereden door rovers die terug of vlog al vlucht auto. Ego automobiles bhaiya beskoten oké seven dagis hai. Oké dagis hai chorwan dagis hai aan auro beskoten en aangereden door rovers giski terug op de vlucht auto. Dek chakalat bhaiya aur ek hum Facebook pe tu dekh sakega 45 jaar ke automobiles hai so mar ke sanjha ke banchit hue hai aur rahega an Een Pengelstraat met zijn naam mee, gericht geschoten op een auto. Ego auto koper dagische met gewapende overvallers. Kijk, betalen moesten nadat ze hem hadden beschoten. Achtervolgde het aangereden. Die drie gemaskerde mannen sloegen vervolgens op vlucht. Hun donkergrijze Toyota fiets weer later verlaten, aangetroffen. Dus pijletje roemen dagische auto wapet, auto wale en een meer dagische blijkbaar. Ego inspector raha skoutwa ki sab dage raha maje skoutwa jai ko ke dage lagal te chorwan bhag gaye hain yahan bataege police inspector is the unwitted Toyota starlet van een zorgen hoop se ujat raha mara treta me ma konchio ma dhal raha bhaiya auto batiya na tab to luteda to ke luti se bole hai ga ko kariya kariya Toyota fits bole hem khareema tait oke achter volg kari so to wa ke ab bole hai tun dei dei ego Kruising dochter op een uit mijn straat ke verkeerslige je roekel he Otra me fitswa jai ke Achter hem to stilstaan okar pachwa jai ke roekel he A fias en achteruit spiegel itake he Ki tien go gemaskerd en me otowa ke piche Apan banduk lege vier wapen lege utral he A itre me geen spiegel om schotwa deklees he A bole een van hem loste nog een schot op het auto mensen A bole dede wist via het bronfiespad weg te rijden Maar de overvallen zetten achtervolging in. De jeke dagert, dag is het ook door Ibronfis, pas maar ze, pat maar ze bhagel he. Baki is het achtervolgen, die ze toch ook de dokter of in het monsterland mee. Probeerde hij hem af te schudden. De fiets bleef hem achtervolgen en reed zijn auto uiteindelijk van achterna. Volg kerke auto wakke pachua marise. Obole daarop stapte Didi uit en schoot hij gerecht op de Toyota fiets. Otreme schootwa utral he inspector wa. O gerecht Toyota koper dagise. Obole het voertuig werd aan de rechterzijkande door kogels geraakt. Overvallen ontkwamen vervolgens via een Pengelstraat in de richting Brumastraat met z'n geil heen. Een auto was pijgen bij jou, je hebt de achterzijde van de Sipenstienland mee. Obole de verdachten hadden de auto verlaten. En ik heb gebaggen volgens de politie overgestapt in een andere voertuig. De Surinaamse politie is onderzocht bij jou, onderzoeker heen. Zeg wat gebaat mee, maar kiesie paaien met jij onderzoek kare ki churuan ka hai ekki etra onderzoek kare se ekar otu wa me konchi raha drugs raha ki paisa raha ki kaun aysan cheez raha nani ki churuan etra jaban
ओके अख्तर फोलक करी से भैया देखो अब बउसवा का बोले है मिनिस्टर फ्रॉम बैतलांत जाग के बउफा बोले 20 मिलियन अमेरिकन डॉलर स्लेक्स इज द स्टॉप सुरिनामसे बॉस इज फेल मेट वन बोले 20 मिलियन अमेरिकन डॉलर पैसे बोले सरनाम के जंगल में बोले और जबर वार थे बोले इस टू सेकिंग पैसे 20 मिलियन के डॉलर के फॉर नेचर बहुत इन फोल्कस मिनिस्टर मेल्विन बोफा स्लेक्ट अन बखिन सुरिनाम विल दैट द इंटरनेशनल गेमेंस्का मेयर फाइनेंशियल फ्रंटवर्डलिकहेड नेम फॉर हर बहुत फन सेन बोसन टरवेन हे लैंड रेमटो होत voor economische ontwikkeling. Ook de gemeenschappen rond het bos wonen moeten van de financiering profiteren. Tot John Ingi Jukano Rehbolupai, zoals Oesapke Bidja, profiteren kreke. Amake Bole, zo kreke behoed doet. Ja, hij minister Beofa, kreke pahele de kavo. Tabole jungle hamlo etrakalibul okerbaan met jahi paiswaar heke. Bole 90% van het Surinaamse grondgebied met bos bedekt te houden. Beofa vindt dat een geïndustrialiseerde de landen tegenover de inspanning een grote verantwoordelijkheid moet nemen. Toen ik aan Paisa Milel, maar Paisa Bole, Juka Ingik, Jahin Jaike, Makka Bajai, Bahia, Tuloma Prejane, Toria Kaise, Tulon Jano, Bahia, buschauffeur, Bout Rukeloos, Suriname, Desmeo, Buschalave, Bahia, Pat van Wanika, Fietsen, Pat. इन हाल करे है वो एक मारे सन्ना में बड़ा डल लगे फमे हो तो चलावन भाई वन सबन बहुत रुकलूस चलावे है अब देखो बोले यहां बतावे हैं रुकलूस रे खतरा बे शोफेर कान खफोलखन है बन फॉर फरगुनिंग एंड शोफेर्स कार्ड तो रुकलोस चलाए से बस चौफेर रिस्केर करे को कर रहे भी चना जाएगा और बोले हैगा फरखुनिंग भी चना जाएगा दैट कैन वनीर द वेट दार इन फोर सीट बोले हैगा हेड मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन टीसीटी के बोले हैं 5 तारीख अक्टूबर के बोले उसे स्ट्रेंगर कंट्रोल कर लिए बोले हैगा अनलोडिंग बोले उसे देखे कि चौफेरों फरकेर में बहुत रुकलोस चलावे हैं और बोले हैगा फिया द डायरेक्टोरेट ट्रांसपोर्ट वर्ड कंट्रोल सामन में द पुलिस एंड अंदर betrokken instantie aangescherpt via bolle aangescherpt hoe gaan to ye sabat bolle hai ministerie van TZT ook voor vervoersbranche zelf wordt aangesproken bushouders chauffeurs worden opgeroepen mensen to ee buschauffeur ke bare mein to lo nitra jor chalave hai ab dekho ka hone wala hai to hamari janta hamari pyare pyare janta अब देखो भैया तुलन जाने हैं पहले के एक्स मिनिस्टर फान यूसीसी एंड पॉलिसी हम ना बोली ला भैया फे यहाँ पे के तहत पे हम बोली ला एक्स मिनिस्टर है एनडीपी के और वो हैगा सेलोस भैया सेलोस के तुलन जानो है तू और ये बड़ी क्रिटिक लेफर करी से हमारी जनता और जो क्रिटिक लेफर करी से और लेफर करी से ओकर एटम पाई के ऊपर भैया यहां बताई गए हैं फंडेक सिलोस बोले एटम पाई बोले अपरे के बलाखरक करी से बोले ऊ सोचे हैगा कि ऊ देना लेट बा तू मिनिस्टर के पास से का ये खाद नीट करन बपाले फॉर द मिनिस्टर व्हाट है मुदुन तस जेनिफर यूरिस जेनिफर फंडेक सिलोस बोले हैं एनपीएसर पुतिनी एटम पाई के अपरे के बहुत बलाखरक करी से बोले ऊ सोचेगा कि ऊ बास है मिनिस्टर के का जोनू बोली हुए के बोले वेल अस फोर्स Voorzitter van de vaste DNA-commissie onderwijs. Volgens de jurist is het niet aan het parlementariër om te bepalen wat een minister moet doen. Ja, wat eigenlijk, bole sumana yu leki DNA, bole saai je lekla van DNA, je gaat niet kunnen bepalen. Kie konji minister ke mag kareke, konji ke na mag kareke. Iemand van Dijk, Silos bole zeggen, moet vooral NPS gaan letten op dit soort zaken. आतों पाए बोले हैगा बोले हमें बोले फॉरवर्ड कांग ना देखा है अंडरवेज में बोले लड़कन बोले हैगा twee terwijl kinderen studenten leerkrachten ouders daarvan dagelijks de gevolgen ondervinden bolle daarom vertrek ik als voorzitter voor de onderwijscommissie leidde tot verschillende politieke reactie
तो एनी पेयर भैया एगो मार्शल उस बेरे तुलो सबको जानो के तो बोले बस ट्विस्ट द लीजिंग फॉर आतों पाई एंड स्टेल द द एनपीएस सर दोर ती हुवेर अल 20 अगस्त 2026 tijdens ego huishoudelijke vergadering mee tot voorzitter was benoemd. Hoever bevestigt de benoemingsdatum eveneens in het dankwoord van haar Facebook pagina. Toch op sto eerste babaat op deko sermakka koor hem jij henani sermakka koor jijla hua ke SVM ke pani gandha hai bhaiya गंधा है कोलेर पानी जो उज्जर चाहे भरण हो गए है और SVM के पानी जे तू ना पैसा भरियो भैया तो डायरेक्ट तो के आई के काट देगा वो ओनर जो सर मक्का के है हमार मौसी लोन हमार नानी लोन बतावे यहाँ पे खराई में तक प्रॉब्लम हम उसे पैसे वाटर आई द क्रांग फॉल्कस हैं हीफ्ट वाटर रिकल मातक गंधा है ब्रेन हो गए है बोले फर्ट्राउंड फन कम सिम्सिन अंदर है साउंडलक दूल एंडन सोमा के बोने सेकंड डार्म खनू साख्त सेन वाटर तक कूपन बोले उपानी बोले हम लोग ना खबर एक पायला बोले हम लोग के जाए के कीने के परे दुकान में afgelopen weekend met Bolle Sarmakka mee. Bolle en spraak met bewoners over de situatie. Surinaamse waterleidingmaatschappij. Maar vinden dat een structurele oplossing uitblijft. Maar te iemand heeft foto tot de KW. Via Kwara Sanke waterleiding. Omdat je Wanika Maigere een van de bewoners vertelt. Die ook een situatie Sarmakka mee. En ook een beetje ervaren is. Bolle momenteel. Bolle pani probleem. Maar Safa pani na gire. Bolle wat een mus in het land. Hebben wij hier in Sarmakka niet. Terwijl de SWM station Tijger kreeg. Want we dus terwijl het SWM station Tijger kreeg. Heel dichtbij is, hebben wij thuis geen toegang tot goed drinkwater. Waarom de Kwarasankena bij jij hega tijger kreeg? Waarom het hier bijna elke andere week in het land wel de mogelijkheid om gebruik te maken schoon water ze lekker tegen krieken het mister wat kakken te bolle hege bewoners wapen bolle hege kwaliteit panieke bolle bepaalde moment pe panieën na gere dagelijks uit de handelingen moeilijk te gebruiken bolle hege klachten ze van krisen SWM mee volgens hen kregen zijn daarbij de toezegging dat maar een oplossing zou worden gezond bolle wo epole gaan zoeken maar beta ke koplossing na bhele telkens kregen we te horen ja het komt goed we krijgen een oplossing maar er komt nooit goed steeds geen oplossing ik maar hé jonge Suriname de stap genomen om in de media te verschijnen adjoen chief media me verschijnen bhele uit de johnny lage zomaar thoro o bhaag saaje bhaiya oh hamme batawe ke tuurlijk het ook aan he. Ik heb een dierotank. Ik wil bolle als je komt kijken is er een grote modderboel. Je ziet overal vuil en zwarte vlekjes. Zoveel vuil. Je kunt het niet drinken. Drinken is echt uitgesloten. Dus een mieke dierotank kwam is van waterleiding. Ze hebben we he. Te hitere voorste drukking. Ik heb een toilet met een panier naar Giri Bhaiya. Toen ja, betalen we de aanleiding van de klachten spraak met de diensthoofd SWM Sarmakake. Ook een naam Prichen Sarabjit Singh. Dat is niet helemaal waar. Bolle, ik ben vorige week samen met de minister ook in het veld geweest. Omdat we recent 2 klachten hebben ontvangen. Ik wil ook aangeven dat mensen naar de station kunnen komen om hun klacht door te geven. De hele meer hebben zoals gekregen. Bolle, verouderlijke leidingnetwerk. Over de oorzaak van de geur zegt de diensthoofd ten aanzien van de geur kan ik wel aangeven dat dit soms te maken heeft met de veroudering van een leidingnetwerk. De Sarmakkaker meetje klakker is अब बोले पुराना है भैया तो के नवा कर वहां तो पुराना पैसा थोरो ली है अब देखो भैया हिया हम जाइला एगो औरत भैया पौड़त रहा पौड़तरा भाई पौड़तरा अनफ्रो सोमर के संजा के गल पौड़े क्लारा क्रिकी में और पौड़त में ऊपर ना आयले भैया बुढ़ के मर गए बिचारी हलफ दरी संजा के बोले सिपाही गले संदराई के और बोले ओकर लेक निकारी से बोले अन दुइक प्लुक फॉर अ ब्रांडवेयर इज नाले लोकेशन फॉरट्रोकन ओम असिस्टेंसी से फलीनन तबरी दुख के बात है एक औरत जान गेला पौड़े
और पौड़ते में बुड़ के और बेचारी मर गए है। और ये बात है दोस्तों सूरीनाम देश के। और आगे हम जाए है भैया पोकिंग तो खवापंद बरोफे योहान अडोल्फ पेलंगस्ट्रात में। हाँ योहान अडोल्फ पेलंगस्ट्रात में जो बिस्कोतुआ के बारे में बता रही ओकर बारे में जो उरुफरवारा भैया फास्ट कैंटीकन लगाया रहा ई बत या तो लोग के ना बता रही हम बोले ओहू तो लोग के हम जल्दी से बता दे वन आदमी बोले कैंटी के प्रतवा ना लिख ले रहे ने मरवा भैया चोर भैया दागी हुआ पे जहां ना चाहे दागे के मौसी तो बोली चुतरिया आप दागे ना ना ना ना बहुत खराब का जहां दागी से एगो बरूफिंग भैले दम बोर्ड त्रांत में श्री नाम में तो हुआ एगो सेवरंत में देख यार कमान के लगल है ओकर खसलाख दिल में भैया। हाँ अब देखो खसलाख दिल मोई से अपन काम कर पावे कि ना कर पावे है हुआ पे जाए क्योंकि लगल है स्कोतवन और खमस्कर दफरदाख तखेंगे भांदोर ओकर सोना के केती ले के मोबिल ले के भग गए है और बोले ओकर भाई जो रहा भैवा गए है लड़े भैवो से पिस्तौल तानी से भैवा को ऊपर और दोनों भैवा को ऊपर फाल करके और ये का बोले है रोफर ऊपर से डाक के एगो भग्य भैया और वो हस केटिंग फ्रॉम द हॉर्स क्रूक है स्लाख तो ऊपर फरसेट से वार्नर वॉर्सलिंग ऑन स्टोन मेंस। तो आप लोग को हम एक गीत सुनाते हैं हम आते हैं बाद में।

0: देखो हम पर सपना लाओ, अब जो मिलना।
1: अच्छा जी,
0: अब जो मिलना बांध के सहरा ही मिलना सरकार।
1: तो अगले इतवार

और एक चीज तो हम भी मांगते हैं और पहला बार नहीं बेर बेर हम मांगेंगे हमारे दोस्तों हमारे यारों, और वो चीज है रेडियो फहन पिछू लगाए रखना।

दोस्तों, अपना रेडियो फाउन का समाचार को लेकर हम और आगे को बढ़ते हैं। बस सुनते ही रहो, जो हर मंगलवार को हमारा प्रोग्राम और शुक्रवार को हम लाइव चलाते हैं। सूरीनाम के न्यूज से लेकर और देश के समाचार आपको हम सुनाएंगे। देखो भैया, एनडीपी के आदमी लोन एनडीपी छोड़ के और जा है भैया, तो सीमोन का बोले हैं एनडीपी फोर्सेतर बोले ओफर फॉर ट्रैक मेर हिबा के और रहमानी की खाद मेंशन है जनता तो भी कितना खुशियालिम ना भैया, जो हमारे देश में इतना दुख है। तो एनडीपी बोले है बीते हुए हफ्ता में बोले कितना प्रोमिनेंट पार्टी लीडर के बोले छोड़ के एनडीपी भाग गए हैं। सो आज भैया अने प्लीज सो उन फन बहुतर से रोमानो मेरहिबा और बोले हैगा पॉन्ट बैठे के कोऑर्डिनेट करत रहा और फॉर्मल का ऑफ डीलिंग फोर्सेटर लोनर्स रा महनी बोले ये दोनों छोड़ के अपन लेत मार्च का धर के और बोले चल गए हैं। NDP voorzitter Jennifer Simon zegt dat de dergelijke bewegingen binnen politieke partijen die in de coalitie zitten vaker voorkomen. Tegelijkertijd benadrukt zij dat er ook personen zijn die terug wensen te keren naar de partij. Toen als je NDP ke partij ke baren bien bolit lo ke batai dei ki toria kaise ek aurat ke up baat hum karela एगो औरत भैया खूब सोना के केती पहन के चमकावत रहा मौसी, खूब चमकावत रहा। बस उतरे में भैया चमकते चम चम चम चम चमकत रहा। सो मार के भैया बस लतूर वेक में खूब चमकाए रहेगो इन फेस तक यार के औरत और चमकावत चमकावत अपन फ्रेंड से गेल हां नार गोरबाख खान फॉर फेरतीर नहीं गोरबा फेरतीर को जी भैया महिया लिखल है और बोले हैगा उतरे में बोले ना से एनिग टाइम दार हद दौर गब्राख बसलोटन सही ते फर्ट्रेकन ते बोले फर्ट्रेकन ली माती जाए और बोले है स्लाख्तोफर नाम प्लास इन ओ तुम बोले बढ़ गई ली तरवेल ओकर फ्रिंटवा जो नंबे बहरे खड़ा रहा ओ ही में भैया दुई मिला आइल है दुई मिला आइले भैया बोले द फर्ट्रेक बोले पिस्तौल निकाले से दुई मिला और बोले हमार फ्रेंड के ऊपर भैया स्लाख्तोफर में इस इन फुर्तेक प्लास से नहीं मन द मान वेखर दे प्लस से नेक्ट द फर्दाख्ता हार हास्केटिंग फन द फ्राउ वेख vervolgens stapte hij in een gereedstaande Toyota Fitz, maar die tjuri hoor bijna, bij de Mark 2 ze hoort eraan, op Toyota Fitz bood in hem aan J. Roof Zunila, tweede Toyota Fitz gebaar hem in jaren, maar nani. In de eerste melding werd gesproken over meerdere verdachten, maar uit onderzoek bleek dat alleen één gewapende persoon te zijn. Toen zijn naam bijna ketie petie pijlke na jie hier ze je. भाजी लोग के बोली ले जाइए नक्खू नक्खू लाल उल कर लियो ओठ उठ लाल कर लियो लेकिन खोना ना पहन के जाइए दबलाई वबलाई के कुछ ब्लिंग ब्लिंग टांग लियो उरिया गुरिया नहीं बिना मारे मराए जाइयो ऐसे बांट बे बता रही। अब देखो तो रोफर भैया कुछ ना पावे खसलाख दे लुए में पिस्तौल से दाग देवे है। अब ओकर न्यूज आप लोग के हम बताए हैं तो ऐसे है भैया ऐसे है। सूरीनाम के बातचीत हुए मथुरा का बोले फिर यहाँ पे के मथुरा का बोले मथुरा बोले है सीमोंस प्रेसिडेंट बोले हैगा अपरे के बोले बहुत लाख ऑफर करे है कि हमार फोरक रखें फिर यहाँ पे के हमें बहुत स्लेख कासा दे से बोले कुछ ना दे बोले बहुत स्लेख तू स्टंट में बोले हमें दे से देसुआ वो एक मारे देसुआ में इतना प्रॉब्लम है। तब मथुरा बोले मुहा बन कर मुहा बन कर बोले मुहा बन कर बोले तू हम लोग के कसूर देवे है बोले प्रॉब्लम हुआ तो एनडीपी रखी रही 2015 तो 2020 में अपरे कर ले रहा जो कर माखत रहा प्लेटफॉर्म जो रहा भैया लिंक प्लेटफॉर्म तुरंत ऊपर कर दे ले कर्जा ऊपर कर्जा ले ले और बोले चपराई के बैठ गए ले बाटे अब बोले कि फे यहाँ पे ही करी से ई बात बोले है
Mathura bole he VHP ke bole he NDP regering die tussen 2015 en 20 aan de macht was, beleid waar van oorsprong van deze probleem. Or bole president is begonnen met een slachtofferrol door aan te geven die situatie hem houdt krap over lelie. Bole je skes dat je in 2025 een heel moeilijke situatie hebt overgenomen. Bole maar je hebt zelf daarbij bijdragen. Natuurlijk hebben alle partijen bijgedragen, maar wie heeft gezorgd voor al die schulden die als een strop om onze nek zitten? Ibad Matura Bolehe, Bolehega, een derde van onze begroting gaat naar schulden. 1,8 miljard Amerikaan dollar. Ke bole hem lo karja baati bole kali karja bhara hai. Au bole karja wa tu hi lun tu le rahe le. Het zijn schulden die gemaakt zijn door haar regering. Jab u voorzitter la DNA ke parlement ke. Au bole upriode me bole staatsschuld keer op keer stroom badlat rahe le. Dan moet je je wel van bewust zijn. Weten, beseffen daarvan niet ken moeilijk is. Maar herstellen veel moeilijker is. Daarom moet je altijd zorgvuldig beleid uitvoeren en beslissingen nemen die altijd in de balans zijn van Saïsabad. Matura ego interview pe Bolise dosto anewala sanivar ke. Binnenkort anewala sanivar ke dosto hame ego interview programma hai om 1400 uur. 10 oktober ke om 1400 uur heb ik een interviewprogramma. Ostadik Ostaan, Maha Ostaan, Sunder Hira hiya rahega om 2 baje. Aur Pandit hiya rahega, aur log hiya rahega sathe sath. Surinam desh mein Nachaniya Champak bhi hum log aisending mein labe. Jo hamara Hindu Vishw jo hai, hamara Hindu Vishw ke mare mein aap log jano hai. Surinam desh mein kitna misbrauk hue hai. जीप पे सबन भैया ले ले अगरबत्ती ना अगरबत्ती का बोले है वो का बोले है आगे बार बार और कटलिस लेके भांजे हैं और का बोले है नाचे हैं मंदिर में और कटलिस लेके भांजे और रात के जाए के पर्दो फिल्म बनावे है तो ये सब चीज भैया हम लोग बतिया कि हम लोग के हिंदू धर्म में और लोन्ना के नाच के जो मध्य है वत होत और खात हम लोग उस्ताद को उस्ताद बजाब जो हम लोग के पुराना नगारा मास्टर है हम लोग के ढोल मास्टर देवराव रावराज सुरेन अन का बोले है अन हीरा सुंदर हीरा चंपा इस लुंडा के नाच वाला आदमी वहां फ्राक कि हम लोग के धर्म में ब्यासानी में नौता है कानी में कौन ची हो रहे हुए है कौन ची ना हो रहे हुए है सो दैट वो हम बीच ओपहेल्डनिंग क्राइक दी गस्प्रेक खाव दुन वहां निमान फर नहीं इधर इधर इन इंसन इंसन वार्ड लाते मां वी विल वेल ओवर ऑन हिंदुइज्म फर्टेल व्हाट नामलिक इन ब्रेलोफ टेजस लुंडा नाच मुट खान खबर दैट इज हील बेलंगरेक वन आर वर्थ इट heel veel misbruik gemaakt, waardoor vandaag nu een heftige discussie is op de sociale media. Dus dat wil ik even doorgeven, beste mensen. Toen zat en zat hem ouder aange mangela jai, Mathura vindt dat president Jennifer Simon in haar jaren op verschillende punten ook tekort door de bocht is gegaan. Er moeten keiharde prioriteiten worden gesteld, terwijl bij de hervorming van de overheidsapparaten ook moet worden aangegeven waar er zal worden bezuinigd. To ye baatjeet hai hamare pyare pyare pyare pyare sundar sundar janta. जो आपको हम बताते हैं अब देखो भैया कादेंसी जाने मिशिकुआल तो आंदाख मांगे फे यहाँ पे के पॉलिटिकस ऊपर आर्टिस्ट आर्नोल्ड बुकुरू बेहतर बकेट आज कादेंसी बढ़का फे यहाँ पे यार भैया बोले फे यहाँ पे volgens hem zijn er personen binnen de leiding van de VHP zogenaamde bromkie jari tegenwerken, waardoor deze afbrokkelt. Bolle partijleider Santoki Marge he, evaluatieperiode had ingesteld.
Obole haar koers moet aanpassen en dreigt zelf met vertrek als hij naar eigen zeggen niet correct wordt behandeld. Obole OVAP moet ze niet krijgen, want ze hebben een bromtje daarin is nakker is en toch hier had de karatra. Bole op nakker he, bole onder voorzitter Aziz Kumar Gayadin, volgens hem de enige die telefonisch contact met hem opnam en hem uitnodigde voor een persoonlijk gesprek. Dat gesprek vond plaats in de fractiekamer van VAP. Obole volgens VAP toont dit aan Gaya die nog gevoel heeft voor de partij. Obole de artiest zegt dat hij zijn kritiek vooral uitspreekt in het belang van VHP achterban. Obole Boekro zegt kansen te zien voor VHP. Volgens hem zou de partij NDP verslaan als er vandaag verkiezingen zou worden gehouden. Hij vindt daarom jammer dat VHP-leiding onvoldoende inzet dat er hard gewerkt moet worden. Te ibad kadensi bole he VHP'er bole je ook een aandacht na miliga te bole ki u bole ki partijen chhoorke aur chal jayega hamari janta aise baat he. अब देखो भैया हम लोग जाने ला शहर में हम लोग के रैक सेटिंग हुए लेकिन देखो रैक सेटिंग अल्बिनम भी हुई भाई अल्बिनम भी हुई बताया गया है कि एगो रैक मांग बले देशांतरालिसांसी फन रैक्स प्राण सेंड सेटिंग है ना मुंगो एंड ब्रोकोपुंडो ने ऐड खबराई ना अल्बिना पहले मुंगो ब्रोकोपुंडो मोटा अल्बिना भी होएगा ओक द अफ़डेलिंग लीगलिसांसी खार फोर्टन रैक्स ट्रीज डिस फरलेनिंग अनबिदन अल्बिना रैक्स प्राग दिखतर बाय द बर्गर टाइज़ द ओपनिंग सेरेमोनी स्प्राग और दे इसे ही बोले हमारे वहीने का मार्फेन कि डंक आउट ऑन इट होफ कि हम लोग के पार्टनर्स हैं uitbreid hem ook erin laat, hem ook Albina hebben hier per rechtspraak hoe pijgen legalisatie voortaan in Albina. Tijdens de ceremonie waren medewerkers van de afdeling legalisatie aanwezig. Mevrouw Kortram en mevrouw Rees overhanden documenten aan burgers onder toezicht van de gevier. अच्छा बात है कि अल्बिना में भी रेक्साक हुई नहीं सबके आवे के परे है और शहर में भैया एकर बारे में ऐसे बात चीज होवे है तो हम और आगे जाए भैया क्यूबा के ओर और त्रिम के ओर क्यूबा तेखस प्रेक करे क्यूबा स्प्रेक त्रिम तेखन में से बोले अमेरिका के तेखस प्रेक करे से तेजे से अंदर हंडलिंग क्यूबा के बात हुए हैं तो यहाँ बतावे अमेरिका क्यूबा में बोले अंदर हाउडन कांटेक्ट है गा बोले फॉर्मूला अंदर हंडलिंग इस फॉल्कस हवाना जोन क्यूबा में बोले खेन स्प्राक और एक बारे में क्यूबा के डिप्लोमेट जोन है जोन अमेरिका में वाशिंगटन में बोले है कम्युनिकेशन कनाल इंटरसेप्ट बेडल लंदन बस्तान बोले द कांटेक्टन फॉलोपन फिर पर्सनलिक ऑनमूटिंग टेलीफोनी गस्प्रेक है व्हाट्सएप से गस्प्रेक हैगा अंदर हालनेस अजेंडा ऑफ द हेरफार्टिंग फॉर द ऑफिशियल गस्प्रेकिंग के बारे में हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा जनता है तो एक गीत आप लोग के और सुनाकर अभी हम तुरंत आ जाएंगे अपना प्रोग्राम को लेकर हमारी जनता एफडी ग्रीन बॉलीवुड सॉन्ग आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे हमारे प्यारे प्यारे सुने सुने सुने और वालों के बातचीत हैं

अरे ओए ओए ए मैं प्यासी बन गई तो क्या। तो ये गीत आप लोग को हम सुनाते दोस्तों, एक दो समाचार हम आप लोग को और सुनाएंगे, उसके बाद में हमारा प्रोग्राम को हम बस खत्म करेंगे यारो।

भाई को उनकी भैया स्कारल फ्रीडेन का मतलब है कि वो केयर फ्रीडेन है लॉसअप पार्टनर है जेकर संगे वो खस्यालक बेडी में खाली जा है सौंदर इन खफर प्लेटिंग और बोले ऑफिशियल रिलेट सीना है ऐ दले बोले बैठे फराव हाँ इसे बोल ली तो भोग दे से छोड़ी भैया को महीने के मानचित है साथ साथ बुरोन तो बोले एक वेल नीत दाते का फर किसिंग इशू वर्ड साथ साथ भैया एगो नीत

माना खुदा है और तुल जानो है फ्लाई दुबई के जुम्फली नौ यात्रा इसराइल में हम लोग के इंडिया के वो पिलोट बचा ले रहा और जो को पिलोट रहा ओकन्ना हमान आल हमानी और टेरोरिस्ट रहा भैया और मात्रा प्लेन आ जाए गिरावे इसराइल के फ्लिक टाइप पे फॉल्क रियल एयर मारो फॉल्क द डिमांड

अब सब कोई ऐश कर ओपोजिशन एन तो जाने क्वालिसी में इधर हिस कैबिनेट से कुछ निक्स डूं अस बलास्टिंग प्लान स्नेवल्स इत रेगिंग हास अनमोगलिक मार द रूट आउट लिंक्स लाइक ओक नीड फॉर द हंड टू लिखन हेट रोमल आल बाय द वीवीडी फन वीक द डील मेट प्रो ओवर द सोशल सेक्युरिटी और एक बारे में बोले हेगा हीव द लिंक्स पढ़ने तेजस कंपनी इनफॉरमेशन सो हार्ड द डोर गवीजन दैट फर्दर सामनवर्कन अनमोगलिक लाइक zonder de steun van Pro. De kobaya belasting van die kreeg, hij kreeg Suriname, korf, politie Suriname, 1,

ze willen de lessen om middelbare scholen deze week worden geschraapt om tijd te maken voor een intern overleg. Kibari me, hamari, pyari, pyari, janta aise baatcheet hai. और यहाँ से हमारा आज के समाचार हम खत्म करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, प्यार भैया राम। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम।

तो दोस्तों पद्मा श्री मोहम्मद रफी का एक सॉन्ग भी आप लोग को हम जरूर सुना देना चाहते हैं, जो आपको जरूर सुनना चाहिए, वो है और वो है तुझे प्यार करते हैं और हम सदा ही करते ही रहेंगे, और वो है मोहम्मद रफी जुमन कल्याणपुर का ये गीत है जो आपको हम सुनाने जा रहे हैं।

और तुझे प्यार करते और करते ही जिंदगी भर रहेंगे। तो ये परमा श्री मोहम्मद रफी का गीत आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हैं, और वो भी जुबान पर। और जुबान पर जब चर्चे होते तो क्या होते हैं।

और आजकल क्या होता है आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे है जुबान पर, और जुबान पर चर्चे होते तो सारी दुनिया सुन लेंगे। शहरा बानू विश्वजीत का एक सॉन्ग है अप्रैल फूल का सॉन्ग।

और उनकी पहली नजर में और क्या असर असर पड़ गई है। नाइटिंगेल लता जी का सॉन्ग है, उसके बाद में एक रीमिक्स लेकर हम आते हैं।

चोरो चांद खिलाओ तारे हंसे ये रात अगर मतवाली के बाद हम चलते हैं काली तेरी चोटी है।

हंस की दुनिया दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं फाहुन के, जिस पर हमारे भाई रॉय जी आपके सुंदर से कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी कि जॉनी नंबर।

और दो लफ्जों की है ये कहानी, मूवी के नाम है द ग्रेट गैम्बलर। अमिताभ बच्चन सिनेमा ने इस फिल्म में काम किया है, गीत को गाया है आशा भोसले दोस्तों। और ये ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग आपको जरूर अच्छा लगेगा, आओ सुना जाए ये क्या है।

0: सुना दी। ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

और तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं दोस्तों, आउट इन गोल का प्रोग्राम यहां से हम चलाते हैं हमारे, तो यहां पर क्या है आओ सुना जाए आउट इन गोल का ये सॉन्ग और पुराने गीतों की बहार प्रोग्राम है।

जन्म ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग हम आपको सुनाते हैं हमारे यारो हमारे दोस्तों। और एक और हो जाए, ये बहुत पुराना गीत है कि अखियों का नूर है तू जोहर एन महमूद इन गोवा, अथवा सुपर हिट फिल्म में से। और ये गीत आपको हम सुनाते हैं रेडियो फाहुन के माध्यम से और यहां से सुनाते हैं।

0: ये गीत थी एक बहुत मशहूर गीत है, आओ सुना जाए ये क्या है।
1: बेकरार
0: महेंद्र कपूर नहीं दोस्तों,
1: आपको हमारी पसंद लौट
0: हेमंत कुमार।

और ये रातें, ये मौसम, और क्या क्या होता है दोस्तों, और पुराने गीतों के भाड़ सॉन्ग, हम चलते हैं झूमता मौसम मस्त महीना। और नतिगिल लता जी और परमाश्री मनाली का ये सॉन्ग है।

और झूमता मौसम मस्त महीना नैतिक लता और परमा श्री मनाली का ये जोंग आपको हम चलाए हम चाहते हैं मैथी मुकेश की ओर की।

और मेरा दिल ये पुकारे आजा ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग, और कभी कभी होते हैं सर पे टोपी और वेलकम कलर दुपट्टा। आओ सुना जाए।

0: to enjoy ever.
1: और रात के मुसाफिर चंदन जरा बता दे मेरा कसूर क्या है और ये फैसला आप इस जरूर सुना दे। हम चलते हैं एक और राज कपूर नरगिस की ओर जो अपनी जमाना में भैया योशिया बहुत मस्त था ना, तो ये सब गीत हम आप लोग को आज ओल्ड एंड गोल्ड सुनाएंगे। और इस प्रोग्राम जो है तो हम और यूसेफ बना रहे हैं। तो दोस्तों और चलते हैं और आगे को इस गीत के ओर, क्या हो गया क्या नहीं होगा, तो आओ चला जाए। और वो है आजा सनम।

जरा मेरे हाथ थाम कर देखो, तुम जरा मेरे हाथ थाम कर तो देखो, जल जाएंगे लोग महफिल में चिरागों की तरह। तो ये सब कुछ शेर भी आज हम आप लोग को कितने दिनों बाद सुनाते हैं। किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे, किसी ने यूं ही पूछ लिया हमसे कि दर्द की कीमत क्या है, कि दर्द की कीमत क्या है। हमने हंसते हुए कहा, पता नहीं कुछ अपने मुफ्त में दे गई। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और ये अगला गीत है ये मर्द बड़ा दिल जर्द नैतिक लता जी परमाश्री मोहम्मद रफी का गया हुआ जोंग है, और मूवी के नाम है मिस मेरी।

मर्द बड़ी दिल जर्द बरी नच जे लता जी परमा श्री मोहम्मद रवि मिस मेरी का मूवी का नाम है। दोस्तों आज प्यार के मूड में हम आ गए हैं, कुछ शायरी और शायरी के मूड में भी हम हैं। तो हम चलते हैं, कहते हैं कि क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं कि यही कहते हैं कि

मोहब्बत आज भी बरकरार है, क्योंकि क्योंकि एक तरफ प्यार आज भी वफादार है, एक तरफ प्यार भी आज वफादार है

जिंदगी मिला ना वफा मिला, ना जिंदगी मिला ना वफा मिली, क्यों हर खुशी हमसे खफा मिली। झूठी मुस्कान लिए दर्द छुपाते रहे, सच्ची मोहब्बत की क्या खूब सजा मिली। तो सच्ची मोहब्बत की सजा तो कभी कभी मिल जाते हैं हमारे दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और आज हम ओल्ड एंड गोल्ड की और यानी मूड में है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला लवली प्यार ओल्ड एंड गोल्ड जोंग के ओर, और ये है और नाइटी मुकेश राज कपूर इस फिल्म में काम किए हैं, और मौफी के नाम है श्रीमन सत्यवती। ये पुराना गीत है दोस्तों, तो आप लोग को चलो माइटी मुकेश की आवाज में।

Houd de hart op de miljoens, Mukesh. Movie ka naam hai Sriman Satyavati, jisme Raj Kapoor ne kaam kiya hai dosto. Aur uske baad to hum chalte hai shair aur shayari ki mood mein to hum hai dosto. Lekin aapko hum kya kya sunayenge, kya nahi sunayenge? Kehte hai ki ek tarah naam rahe zuban par. एक तरफ नाम रहे जुबान पर और जैसे कि चांद रहे आसमान पर. हा, ये तो खूब है दोस्तों. एक तरह नाम रहे जुबान पर जैसे चांद रहे आसमान पर. ये जिंदगी है दोस्तों. कौन सी बात है तुम्हें ऐसी जो मुझे तुम इतने अच्छे लगते हो. तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर और वो है मूवी के नाम है तकदीर. मूवी के नाम है तकदीर और गीत के नाम है बोतल में क्या होता है. कभी शराब होता है लेकिन यहां कुछ और बात है. परमा श्री मोहम्मद रफीर का

बोला बोतल में बंद जवानी।

मुझे तोड़ तो प्याले फेंक तो बोतल मेरे पीछे होलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो हाय बोतल में बंद जवानी पीले बिल

0: अब दरवाजा खोलो, राम बोलो राम बोलो राम बोलो।
1: अरे राम बोलो, बोतल में बंद जवानी फरमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये सॉन्ग है दोस्तों। तो कहते हैं मत पूछो मेरे दिल को क्या हो गया है, दोस्तों मत पूछो मेरे दिल को क्या हो गया है, तुझे देखते ही तेरा ही हो गया है। तो ये कुछ और बात है ना हमारे यारो, एक तू ही है आदत मेरी, एक तू ही है आदत मेरी, इस दिल को है जरूरत तेरी। तो कुछ प्यार भरेगी तो आपको हम सुनाते हैं। तो हम चलते हैं अगला सॉन्ग की ओर, और ये है परमाशीर मोहम्मद रफी आशा भोसले का सॉन्ग, मूवी के नाम है अदालत। अदालत ही अदालत, जिसमें जी प्रदीप इस गीत को गाया है नरगिस के साथ में, और हम चलते हैं ये सॉन्ग की ओर।

जब दिन हसीन दिल हो जवान पद्मा श्री मोहम्मद रफी का सॉन्ग है तो जलते ही दोस्तों प्यार के मूड में आ भी होए हम भी है तो कुछ प्यार के बात करते हैं। किस्मत वाले होते हैं वो लोग दोस्तों, किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलते हैं। और दोस्तों हम चलते हैं एक गीत के और है, टैक्सी स्टाइल 1958 का पद्माश्री रफी का और आशा जी का ये सॉन्ग है।

है तो चले आओ। तो इसके बाद हम चलते और गीत की ओर, और गीतों की ओल्ड एंड गोल्ड का सॉन्ग हम आप लोग को और सुना। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला गीत की ओर, और वो भी एक प्यार भरी गीत है। तो ये हम आपको सुनाते, किसी एक को लेना पड़े है, किसी एक को लेना पड़ा है, ऋषि को है भैया, यूं ही नहीं पूरा है, जाता है इष्ट, जो किसी और को लेना है दोस्तों, दान इज्जत ऋषि को दान मुझे वाल खुद ओपस। तो हम चलते हैं, यहां पर एक गीत है, जाने तेरी नजरों ने क्या कर दिया, और मोफी का नाम है, मोफी के नाम है घरस्ती, घरस्ती मतलब जी हाँ, परमाचरी परमाची मोहम्मद रफी और नाइजीरिया लता जी का ये लवली सॉन्ग है।

ए तेरी जानी तेरी नजर ने क्या कर दिया है। और नतीजे लता फरमा श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है कि कहते हैं मेरी दुनिया और मेरी खुशियां बस तुमसे शुरू बस तुम्हीं से खत्म है। तो हम और एक गीत की ओर जाते हैं हमारे दोस्तों। और ये क्या है, ये क्या है, आप खुद ही सुनिए। और ये राजेश कुमार नगर का और मूफी के नाम तो यहां पर बताए गए हैं, आओ फिर प्यार करें, इसे कुछ लिखा है दोस्तों। और आओ प्यार करो यहां पर लिखा है, तो आओ सुना जाए।

और दोस्तों तुम अकेले तो कभी बाग में ना जाया करो। तो दोस्तों ये सब प्यार भरे गीतों का सॉन्ग आज हम आप लोग को

पहुंच हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो पाहुन के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

अखंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और बनवारील बनवारी बनवारी लाल मूवी का नाम ही मेरे यारो। और आज आपको हम कुछ पुराने गीतों की बाहर सॉन्ग सुनाएंगे हम। और अगले अगले अगले गीत के ओर जाते हैं और वो है वो क्या है वो क्या है, शमी कपूर आज बनवा श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ ये सॉन्ग है।

0: और एक प्यारी का नगमा है और मौजों की और कहानी है, फलंतैन यानी कि लवली सॉन्ग हम चलाते हैं।
1: झूठा ही सही
0: और झूठा ही सही
1: के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही
0: सच्चे कहना
1: दो दिन

और दोस्तों आपको हम और वैलेंटाइन के कुछ और कुछ प्यार भरी गीत से आज आप लोग को हम सेवा करते हैं। ओनली फॉर द लवर वैलेंटाइन सॉन्ग।

0: और दोस्तों दफली वाले की और बात हम चलते हैं और यानी कि लवली सॉन्ग के बाद
1: गाने को है
0: और दोस्तों जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और आज फिर हम आ गए हैं कुछ पुराने गीतों की संगम बहार लेके। तो श्री मोहम्मद रफी का गाना है, रफी के गाने आपको हम आज कुछ सुनाएंगे और ढल चुकी शाम एक गम मुस्कुराने के

कुछ पुराने कुछ नए गीतों से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। हमारे यारों, हमारे दोस्तों, हम चलते हैं अगला गीत की ओर। हम हमसे मोहब्बत करके कुमार शानू साधना सरगम का ये गीत है।

और दोस्तों हम उनसे मोहब्बत करके और मोहब्बत करके अगर मोहब्बत हो जाते हैं तो क्या होते हैं हमारे यारो, क्या होता है उसके बाद हम और एक गीत की ओर बढ़ते हैं, वो है तेरी याद दिल से और भुला ना पाए। फिल्म का नाम है हरियाली और रास्ता 1966 का, जिसमें मनोज कुमार, माला सिन्हा, हेलेन ने काम किए हैं।

और तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, जब किसी से नफरत हो जाते हैं, झगड़ा हो जाते हैं तो लोग उसके याद भुलाना चाहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और होगा मत कर इतना गुरूर, जो कभी कभी लोग कितनी गुरूर करते हैं हमारे दोस्तों। अलका याग्निक पंकज उदास की ओर हम चलते हैं और आओ मिल्क सुना जाए। मूवी का नाम है आदमी,

गुरूर। दोस्तों मत कर इतना गुरूर। फिल्म के नाम है झनकार अलका यांगनी, पंकज उदास का गाया हुआ सॉन्ग है। इस फिल्म में रीना रॉय और गोविंदा ने काम किए हैं हमारे यारों। उसके बाद हम अगला गीत की ओर बढ़ते हैं। कुछ नए और कुछ पुराने गीतों के बहाने प्रोग्राम हमारे चलेंगे। तस्वीर

और तस्वीर तो तेरे दिल में आती ही रहेंगी। ओ नैतिके लता जी परमा श्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सुपर हिट सॉन्ग है दोस्तों। तो प्यार भरी गीतों की बहान प्रोग्राम हमारा।

की रूठ आई। और उसके बाद हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या है हमारे यारो, आज हम कुछ लवली सॉन्ग के मूड में हैं। और लवली सॉन्ग कब होता है, जब प्यार बढ़ जाता है। तो हम चलते अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की ओर। अब भी या महिया, अब देखो भैया क्या है।

और आपकी आ जाने से कभी कभी बहार हो जाता है और बहार के बाद में कभी कभी मार भी हो जाता है। ये तो प्यार में चलते हैं हमारे यारो, हमारे सुनने वालों, उसके बाद तो हम चलते हैं और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं, और हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते हैं। आओ मिलकर सुना जाए।

इसके बाद हम और आगे को अपनी प्यार भरी गीतों के बिहार जोन और प्रोग्राम लेकर चलेंगे, यानी कि और यहां से हम शुरुआत करते हैं कुछ सॉन्ग्स आप लोग को। और ये सॉन्ग्स है यारन यारन, यानी कि बहुत पुराना नहीं है और बहुत नया भी नहीं है, कुछ मिली जुली गीत है। दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है, गोविंदा करिश्मा कपूर ने इस फिल्म में काम किए हैं।

0: ओ मेरे दिल की चैन और सहनाई मेरे दिल को चुपाती लिए।
1: सुनो कहा कहा सुना
2: कुछ हुआ क्या
1: अभी तो नहीं

और आपको भी कुछ हुआ है? नजगिल लता जी किशोर दादा के ये गए हुआ जो है। अब आते हैं नजगिल लता जी और फरमा श्री मोहम्मद रफी का जो है।

मेरे राम ने प्यासा। दोस्तों ये गीत को और हम बढ़ते ही अतिशन हिट फॉर द वेंस, बहुत हिट फिल्म रहा और फिल्म के नाम ही धर्मात्मा का एक सॉन्ग हम चलाने जाते हैं। तो हमारे दोस्तों हम चलते हैं फिल्म धर्मात्मा का एक गीत।

और तुम जान हमारी हो, फिल्म के नाम है धर्मात्मा का ये एक हिट फिल्म सॉन्ग हम आप लोग को सुनाए। और अगर आपकी चांद कहीं खो गया होगा तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। फिल्म के नाम है काला।

श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है खोया खोया चांद। फिल्म गलाम है काला बाजार के बाद हम चलते हैं, हम तुम्हें चाहते हैं और कैसे चाहते हैं यहाँ पे इस गीत बताते हैं। फिल्म के नाम है

ऐसे कि कैसे, ये भी एक बहुत हिट फिल्म थी दोस्तों, कुर्बानी फिल्म के नाम है। तो हम चलते हैं मोहम्मद अजीज की ओर और अलका की ओर दोस्तों, और ये भी एक हिट सॉन्ग है।

दिल है दिल के बाद हम जाते हैं एक वो बेस्ट ऑफ देवानंद सुपर हिट सॉन्ग और वो है एवरग्रीन देवानंद हिट सॉन्ग। फिल्म के नाम है और काला बाजार का ये सॉन्ग है हमारे यारो और ये भी आप लोग को हम चलाएंगे।

और पूछ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गांव रे, और पीपल झूमे मोरे आंगना, और ठंडी ठंडी छाँव रे। तो उसके बाद हम चलते हैं, फिल्म के नाम है धर्मवीर परमाश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सॉन्ग है अनहिट सुपरहिट फिल्म।

0: और आकर दोस्तों मही फिल्म के नाम है और वो है धर्म और वीर का ये जोन है। और हमारे दोस्तों एक गीत और हो जाए तो मेरे ख्याल से और चलेगा। नहीं नहीं दोस्त,
1: चलिए कार्यक्रम में हम पेश कर रहे हैं क्या ख्याल है, अगर आपको ये गीत सुनाऊं इस तरह से आ रहा है।

आज रपट जाई हो तो हमें ना उठाई हो। एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी निकती तीन तख्तक में से निकाले फिल्म नमक हलाल में ये शानदार गीत बप्पी लहरी के साज पर। आप चुने फावन हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका हृदय से स्वागत है। तो लीजिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये शानदार गीत इस तरह से। मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला।

मैती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी दोनों मिलके आपको सुनाएं, याद रहेगा। आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका हृदय से स्वागत है। जो लोग चुनकी मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए, क्या ख्याल है? जी हाँ, क्या ख्याल है लता जी? और सुनिए ये ख़त के सिलसिला लता जी की मुखारविंद से। चलिए लता जी आपको सुनाते हैं ख़त में उन्होंने क्या लिखा, क्या जवाब पाया, गया या नहीं गया, पोस्ट ऑर्डर ने भेजा या नहीं भेजा। चलिए लता जी आपको सुनाएंगे।

ने सनम को ख़त लिखा और ये बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है कि ख़त तो भेजा गया लेकिन ख़त फिर वापस आ गया। ख़त का पता तो लिखा था लेकिन वो पता कहीं नहीं मिला। तो जाहिर है कि ये प्रेमी प्रेमिका की गीत होगी। शुभकामना के साथ चलिए हमने एक गीत चलाए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। अगला गीत है, बस सुन लीजिए, इस तरह से है।

लता जी की आवाज़ में फिल्म आदमी में से निकालने शकील बदायूं उन्हीं की लिखी हुई गीत और हम आपको सुनाएं फिल्म आदमी में से निकाल कर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर चलिए कुछ बदलाव लाते हैं इस तरह से।

ही प्यार है लता जी और किशोर कुमार जी फिल्म रॉकी में से निकाले हैं आर डी बर्मन के साथ पर और पेश किया गया है ये कार्यक्रम में। चलिए क्या ख्याल है, आप भी हैं और मैं भी हूँ, मौसम के देखते हुए चलिए ये गीत।

0: कमो
1: लता जी और महेंद्र कपूर जी मिलके आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, इस तरह से हमने पेश की फिल्म धूल का फूल में से निकाल कर। जहाँ तक मेरा ख्याल है धूल का फूल बहुत लोगों ने देखे होंगे, बहुत प्यारी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म। सुतरमेर से मीला जी आपका हृदय से स्वागत भी है, आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और

0: रफ़ी साहब बादशाह जी की ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं फौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में शंकर जय किशन के साथ पर फिल्म शतरंज में से निकाल कर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है? ये है माइत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।
1: तुमने जब जब
0: फिल्म उपासना में से

मैं द मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस दर्पण को देखा फिल्म उपासना में से निकाले हैं और ये शानदार गीत हमने चलाए हैं। एवरग्रीन किशोर कुमार का क्या ख्याल है? प्यारी गीत।

0: एवरग्रीन किशोर कुमार मेरी भीगी भीगी से बहुत प्यारी नंबर हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। उम्मीद है गीत आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम आपको एक गीत और सुनाते हैं, इस तरह से आ रहा है।
1: अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

फिल्म शागिर्द, जी हाँ, फिल्म शागिर्द में से निकाले हैं और लता जी की आवाज़ में आपको सुनाया गया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ पर फिल्म शागिर्द निगदी से इवन सस्त का है। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए यहाँ से हम

एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत चला। चलिए देखते हैं अगला गीत हम पेश करने वाले हैं नए पुराने गीतों के संगम में। हम आपको ये सुना रहे हैं, ये लवली चीज़ सुन लीजिएगा।

क्या बात है, उदित नारायण और अलका याग्निक मिल के आपको सुनाएं ये शानदार गीत फान हिंदुस्तानी रेडियो रात के कार्यक्रम में। चलिए हम आपको एक गीत सुनाने वाले नए पुराने गीतों के संगम में। जी हाँ, नए पुराने गीतों के संगम में। क्या ख्याल है अगर आज मैं आपको ये सुनाऊं? क्या बात है,

टाइटल सॉन्ग। जी हाँ, टाइटल सॉन्ग आपको सुनाया गया उदित नारायण जी और अलका याग्निक, आपको सुनाइए लवली गीत फॉन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। अगला गीत हमने सोचा है तो लीजिए, क्या ख्याल है आप सोचिए और इत्मीनान से सुनिए आपको ये गीत अच्छा लगेगा या नहीं। जहाँ तक मेरा ख्याल है जरूर अच्छा लगेगा। चलो सुनते हैं।

ना मिलो हमसे, कहीं प्यार ज़्यादा न हो जाए। कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम आपको मिलके एक गीत सुना। मैं तो मुकेश, इस तरह से फिल्म ठोकर में से निकाल कर।

मैं ढूंढता हूँ जिनको रातों के ख्यालों में। नेगेटिव फिर सिर्फ तक 1974 का ये गीत मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म ठोकर में से निकालकर म्यूजिक डायरेक्टर श्याम जी घनश्याम जी के साज पर ये गीत पेश हुआ। चलिए क्या ख्याल है अगला गीत के बारे में मैं हम आपको ये सुना रहा हूँ। बहुत दिन हुए ये गीत भी हमने भी नहीं सुने, चलो मिल के सुनते हैं।

रफ़ी साहब की आवाज़ में और सुमन कल्याणपुर साथ दी। ये शानदार गीत हमने पेश की फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए, अच्छा अभी थोड़ा समय बाकी है विज्ञापन से पहले, चलिए हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

वाह क्या बात है, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये शानदार गीत पेश हुआ और आपने सुने, उम्मीद आपको ज़रूर अच्छा लगा हो। FM पर आप चुन हैं, जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और देखते हैं अगला गीत। अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है, सुनते रहना ये गाना और नाचते रहना, झूमते रहना, कुछ भी करते रहना।

अगर होना था जरूर रफी साहब और लता जी मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत, और आप चून है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है एवरग्रीन किशोर कुमार, फिल्म धर्मात्मा में से 1975 का ये गीत हम आपको सुना रहे हैं।

एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज में सुनाया गया फिल्म धर्मात्मा में से निकाल कर निकली फैफी सीमित का ये गीत और पेश हुआ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए, ये गीत सबसे पहले आपने सुने थे पंकज उदास की आवाज़ में, और वही गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मुकेश जी ने ये गीत गाए थे लेकिन निकला नहीं था। तो जब ये गीत निकला, पंकज उदास ने गाए, तो लोगों समझे वाह क्या बात है। लेकिन कुछ दिन बाद जब मुकेश की आवाज़ में लोग गीत सुने तो जान गए कि हाँ, मुकेश जी ने पहले गाया था।